आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त सन 2026 ईस्वी, प्रातः की 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: कृषि चर्चा संघ उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर एक कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे। किसान भाई लोकन आजुक कृषि चर्चा संघ उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण एक कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई कृषि चर्चा में हम सब एहन विषय पर चर्चा करब जे स्वाद में मीठ होई है। बेसी लोग एहि स्वाद के सुपाच्य हेबाक कारण सेहो पसंद करै छथि। तऽ आउ किसान भाई लोकन शकरकंद के आधुनिक खेती एकर नीक जकाँ कोना करी एहि संबंध में विस्तार सँ गप करी। शकरकंद के आधुनिक ढंग सँ खेती करबाक लेल बाउल वाला दोमट माटि नीक मानल जाइए। संगे एकर खेतीक लेल खेतक पीएच 5.8 सँ 6.8 धरि रहे तऽ नीक मानल जाइत अछि। किसान भाई लोकनि एकटा गप के ध्यान में राखी जे खेतक तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड सँ 34 डिग्री सेंटीग्रेड धरि रहे तऽ नीक होइत अछि। शकरकंद के उन्नत प्रभेद

0: विचार करी तऽ अपन सभक क्षेत्र उत्तर बिहारक लेल उन्नत प्रभेद सब अछि। राजेंद्र शकरकंद 1x4, राजेंद्र शकरकंद 35, राजेंद्र शकरकंद 43-47, श्रीभद्रा कालमेघ आ राजेंद्र शकरकंद 92। दियर वाला क्षेत्र सभक लेल राजेंद्र शकरकंद 45 आ 47 नीक मानल जाइत अछि। रोपनीक संबंध मे जँ विचार करी तऽ उत्तर बिहारक क्षेत्र सभक लेल सितंबर मास आ फरवरी मासक पूर्वार्ध नीक मानल जाइत अछि। दियर वाला क्षेत्र सभक लेल अक्टूबर नवंबर मास मे बाढ़िक बाद के समय उपयुक्त होइत अछि। किसान भाई लोकनि शकरकंद के रोपनी में किछु खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक अछि। मैदानी भाग में एक गाछ सँ दोसर गाछक दूरी 30 सेंटीमीटर आ 1 पाँति सँ दोसर पाँतिक दूरी 30 सेंटीमीटर राखब अछि। आ दियर वाला क्षेत्र सभक लेल एक गाछ सँ दोसर गाछक दूरी 45 सेंटीमीटर आ 1 पाँति सँ दोसर पाँतिक दूरी 45 सेंटीमीटर राखक चाही। एहिसँ फलक विकास नीक होइत अछि, संगे उपजा में बेस वृद्धि होइए। शकरकंद के रोपनीक लेल लत्तीक मात्राक संबंध में जँ गप करी तऽ 0.1 हेक्टेयर के लत्ती नर्सरी में लगेबाक चाही। लत्ती के अगला भाग के रोपक चाही, एहिसँ अपने के लगभग 12 क्विंटल लत्ती के उत्पादन होइत अछि। शकरकंद के खेती में खाद उर्वरक के संबंध में विचार करी तऽ शकरकंद के खेती में सामान्य रूप से 100 क्विंटल कम्पोस्ट, नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम आ 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर सँ सामान्य रूपे व्यवहार करक चाही। ओना नीक उपजाक लेल एकटा निश्चित अंतराल पर अपन खेतक माटिक जांच करा ली आ वैज्ञानिक लोकन जे अनुशंसा करै छै ताहि अनुरूपे खाद उर्वरक के व्यवहार करक चाही। शकरकंद के खेती में पौधा संरक्षण, शकरकंद के लत्ती के रोपा काल में क्लोरोपाइरीफॉस दवाई के 2 ml दवाई प्रति लीटर।
1: अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता कुमार ने कहा है कि यह निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांग पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए AI आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी संदीप सिक्का से भी मुलाकात की। उन्होंने खुदरा निवेश बढ़ाने और भारतीय बाजारों में वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा की। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में

लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु इसमें फंस गए। ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती खुंदीवाली मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का अस्थायी पुल बनाया है। सोरेन जिले में चक्की मौर के निकट भूस्खलन से कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। मौसम विभाग ने बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। राज्य आपदा कार्रवाई केंद्र के अनुसार कुल्लू में सबसे अधिक 33 सड़कें बंद की गई हैं, मंडी में 27 और शिमला में 9 सड़कें अवरुद्ध हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी दूसरे दौर में पहुंच गई। वहीं महिला डबल्स में कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को 22-20, 21-14 से हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। वहीं उन्नति हुड्डा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हतार हुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्य और अमृता प्रमुरिये तुर्की के एमरे सोनमेज और यासिमेन बेक्टा से मुकाबला करेंगे। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ये मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलफेन में खेला जाएगा। भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। दक्षिण अफ्रीका अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 4-0 की हार के बाद वापसी की कोशिश करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे लकवा यानी पैरालिसिस के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। लकवा का क्या कारण है, किन कारणों से लकवा हो सकते हैं?
2: देखिए, लकवे के अनेकानेक कारण हैं, किंतु मुख्य रूप से आम तौर पर यह समझना जरूरी है कि यह सामान्य जन में किसी को भी हो सकता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में जैसे कि उच्च रक्तचाप, ब्लड शुगर या अथवा डायबिटीज़, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया अर्थात चर्बी की मात्रा का शरीर में अधिक होना, धूम्रपान या तंबाकू की लत एवं अत्यधिक शराब का सेवन या किसी भी प्रकार के नशे की लत, विशेष रूप से भांग या कोकेन का सेवन, यह लकवे की संभावना को कई कई गुना जो है सो बढ़ा देता है। अतः इनका परित्याग करना चाहिए। और कुछ कारण अनुवांशिक भी होते हैं। यदि परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को पर्व में पहले लकवा हो चुका है तो उनकी संतान को यह होने की संभावना सामान्य से अधिक होती है।
1: और जिनमें हाइपरटेंशन है यानी उच्च रक्तचाप है,
2: जिनमें उच्च रक्तचाप है उनमें सबसे प्रमुख कारण उचित निदान न लेना और अपनी दवा की डोज को मिस कर जाना, यह सबसे सर्व प्रमुख कारण है लकवे का।
1: अच्छा, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड में अगर चोट लग जाए उस वजह से भी कई बार लकवा देखा जाता है?
2: रीढ़ की हड्डी में यदि चोट लग जाती है, कई बार हमारे सुषुम्ना नाड़ी में या स्पाइनल कॉर्ड में खून का जमाव हो जाता है अथवा चोट लग जाती है, इस कारण से भी लकवा होता है। और इस स्थिति में यदि सर्वाइकल रीजन में अर्थात गर्दन के रीजन में ये चोट लगी हो तो हाथ और पैर दोनों का लकवा होता है। और यदि सर्वाइकल रीजन से नीचे अर्थात कंधे या कमर के रीजन में चोट लगी हो तो दोनों पैरों का लकवा होता है। और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एक हाथ अथवा

0: सिर्फ एक पैर का भी लकवा हो सकता है।
1: लकवा यानी उस अंग का शिथिल पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना, उसमें किसी भी तरह की हरकत नहीं होती है।
0: लकवा एक आम अवधारणा के तहत यदि किसी अंग में ताकत की कमी हो रही हो तो उसको मानते हैं लोग, किंतु मेडिकल परिभाषा में हम लोग किसी भी अंग का सुन्न पड़ जाना, उसमें ताकत क्षीण हो जाना, इन सभी स्थितियों को हम लोग लकवे की श्रेणी में रखते हैं।
1: क्या कुछ लक्षण हैं जिससे ये पता चल सके कि ये जो मरीज है वो लकवे का मरीज है?
0: बिल्कुल हैं, जैसे कि आपको मुस्कुराने में दिक्कत हो रही हो, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही हो, चलने फिरने में संतुलन आपका गड़बड़ा रहा हो, तो आप एक सामान्य जन के नाते समझिए कि शायद कहीं आप लकवे के शिकार हो रहे हैं, ये प्रारंभिक लक्षण हैं।
1: बोलने में कभी कभी लड़खड़ाहट,
0: पानी पीने में दिक्कत, आप उचित उपचार समय पर लेने से आप बड़ी बीमारी से बच सकते हैं।
1: एक समय था जब एक जनधारणा थी कि लकवा का कोई निदान नहीं है, दैवी प्रकोप है, लेकिन आज मेडिकल साइंस का क्या कहना है?
0: आज के मेडिकल साइंस का कहना है कि लकवे शुरू होने के 5.5 घंटे के भीतर यदि आप किसी एडवांस्ड मेडिकल सेंटर में पहुंच जाते हैं और सीटी स्कैन में हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं, तो कुछ दवाएं, कुछ इंजेक्शन हैं जिसको दे करके खून की नली में आई हुई ब्लॉकेट को हम लोग घुला सकते हैं और होने वाली क्षति को 80-90% या उससे भी ज़्यादा कम किया जा सकता है। और यदि उससे विलंब से भी आप पहुंचते हैं, लकवा हो भी चुका है, तो भी उचित उपचार द्वारा 5-6 महीने में आपको काफ़ी लाभ हो सकता है। आप पूर्ण रूप से सामान्य ना भी हो पाए, किंतु 70-80% सामान्य स्थिति में आप जरूर पहुंच जाते हैं।
1: ऐसे कौन से परहेज हम रखें जिससे लकवा से हम बचे रह सकते हैं?
0: सबसे पहले अपनी जीवन शैली में नियमित व्यायाम को शामिल करें। 30 मिनट प्रतिदिन, कम से कम 5 दिन सप्ताह में धूम्रपान ना करें, मानसिक चिंता तनाव से बचें और अपनी जीवन शैली को प्रकृति के पास रखें। अधिक चर्बी तेल मसाले का प्रयोग खान पान में ना करें। उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़ यदि है तो उसका उचित उपचार कराएं, तो आप लकवे से बच सकते हैं।
1: लकवा रोग के बारे में डॉक्टर मनीष कुमार धीरज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले ये देशगान।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आप हमारे सभी कार्यक्रम रेडियो सेट के अलावा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

सावरिया मन भायो, जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं, स्वर है भरत कुमार का।

इसी भजन के साथ भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है रामचरित मानस का। मुख्य स्वर है श्रीकांत पारगावकर का।

कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो, किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।

रामचरितमानस का अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी की दरभंगा केंद्र से किया गया। जानकारी प्राप्त कीजिए आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला 7:05 पर।

आप सुनेंगे दिन के 12:30 से। फिल्म संगीत का समय होगा 1:15 पर।

0: रोजगार सूचना आप सुना करते हैं 2:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 2:30 पर। बजका लोकगीत आप सुनेंगे 2:03। सांतकालीन सभा के अंतर्गत आप सुनेंगे सांत नन्हे मुन्ने युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम संध्या 5:00। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत 5:40 पर। विद्यापति गीत का समय होता है 6:10 पर। ग्रामीण भाइयों को संबोधित कार्यक्रम गांव घर का समय होता है संध्या 6:30 से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा गांव की सफाई नैतिक जिम्मेदारी। किसान वाणी आप सुनेंगे 6:55 से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:50 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुना करते हैं 8:15 पर। विविधा सर्वभाषा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। देववाणी का कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:45 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक फनकार का समय होगा 10:00 और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 से। ये था आज की प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसोचितवान यत् प्रधानमंत्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनेन स्वातंत्र्य दिवसात् पूर्वमेव आईएसआई इत्येतत् समर्थितं शहजाद भट्टी आतंकीजालं ध्वस्तीकृतम्। सः सूचितवान् यत् प्रशासनेन 200+ सदस्यान् गृहीत्वा तस्य विध्वंसात्मकाक्रमणानां योजनाः अपि विफलीकृताः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे सः उक्तवान् यत् सुरक्षा बलैः 14 राज्याणां विभिन्नेषु स्थलेषु समन्विताभियानानि प्रचालितानि यैः एतत् जालं ध्वस्तीकृतम्। एतत् भारतस्य आतंकवादं प्रति शून्य सहिष्णुतायाः उत्कृष्टम् उदाहरणमस्ति। सुरक्षा संस्थाभिः अस्य मासस्य 12 राज्यारक्षिबलैः सह तत्क्षणं गुप्तसूचनानाम् आदानप्रदानस्य प्रणाल्याः उपयोगं कृत्वा शहजाद भट्टीजालेन सम्बद्धानां विध्वंसात्मकप्रयासानां प्रतिरोधाय समन्वितं बहुराज्यीयम् अभियानं प्रचालितम्। एतत् जालं विविधेषु आतंकिकार्येषु संलग्नम् आसीत्। झारखण्डे जेपीएससी अथ जेएसएससी चेत्येतयोः परीक्षयोः अभ्यर्थिनां 24-दिवसीय विरोध प्रदर्शनस्य अनन्तरं राज्यप्रशासनेन 24-2000 जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अथ च टीडीपीएल संस्थया आयोज्यमानाः सर्वाः प्रतियोगी परीक्षाः निरस्ताः। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ह्यः सायं विशेष मंत्रिमंडलोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृत्वा एतत् निर्णयं उद्घोषितवान्। राज्यप्रशासनेन 14-2000 झारखण्ड लोकसेवायोगेन अथ झारखण्ड कर्मचारी चयनायोगेन च आयोजितानां नियुक्तिपरीक्षाणां व्यापकपरीक्षणस्य अपि आदेशः प्रदत्तः।

0: विशिष्टया चुनावविषये चर्चां करिष्यन्ति तथा अग्रिमकार्याचरणविषये अपि निर्णयं करिष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनेन चरणबद्धरीत्या स्नातक स्नातकोत्तर अतिविशेषज्ञता स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षा संस्थानानां संख्यां वर्धयित्वा राष्ट्रिय राजधान्यां चिकित्सा शिक्षायाः क्षमतां वर्धयितुं सज्जः अस्ति। अस्य योजनायाः अन्तर्गतं प्रशासनेन त्रिमुखी कार्यनीतिः स्वीकृता अस्ति। अस्यां नवसंस्थानां संस्थापना, विद्यमानसंस्थानां विस्तारः तथा स्नातकोत्तर उन्नत चिकित्सकीय कार्यक्रमाणां विस्तारश्च सम्मिलिताः सन्ति। केरले विजिंजम समुद्रपत्तनात् प्रत्यक्ष निर्यातः आयातश्च अद्य आरभ्यते। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन प्रातः पादोन एकादशवादने सेवायाः उद्घाटनं करिष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य झारखण्डे अतिवृष्टिमालक्ष्य रक्तवर्णपरा संचेतना प्रसारिता। ऋतुविभागेन अद्य बिहार छत्तीसगढ़ पूर्व मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा पश्चिमोत्तर प्रदेशानां च विभिन्नेषु भागेषु अतिवृष्टेः संभावना पूर्वानुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य आयुष शेट्टी नवदिल्ल्यां आयोजितायां BWF बैडमिंटन विश्वस्पर्धायां पुरुषाणाम् एकलवर्गस्य प्रथमचरणे विश्वस्य प्रथमक्रमांकितं वर्तमान विजेतारं च चीनदेशीयं शी यू क्यूई इत्येनं पराजित्य विजयम् अवाप्तवान्। तत्रैव पीवी सिंधुः तथा महिलानां युगलवर्गस्य भारतीय युगलं त्रिसा जौली गायत्री गोपीचन्दः अपि द्वितीय चरणे प्रविष्टे इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की व्यापक जांच का भी आदेश दिया है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने कहा कि ये निर्णय केवल पहला कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग अब भी लंबित है। विद्यार्थियों ने घोषणा की है कि वो शेष मांगों पर विचार कर अगला कदम तय करेंगे। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। इस योजना के तहत सरकार 3 स्तरीय प्रयास करेगी, जिनमें ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, मौजूदा संस्थानों का ब्राउनफील्ड विस्तार तथा स्नातकोत्तर और उन्नत चिकित्सा कार्यक्रमों का विस्तार शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नादव जाफरी से मुलाकात की। श्री गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत में कंपनी की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा की, जिसमें अनुसंधान एवं विकास विस्तार और भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एआई आधारित सुरक्षा का उपयोग शामिल है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की परंपरा वर्ष 1950 में शुरू की गई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश के कारण कल 87 सड़कें अवरुद्ध हो गईं और चंबा जिले में लोहे का एक पुल ध्वस्त हो गया। अचानक आई बाढ़ से भरमौर में बालोद ग्राम पंचायत में लोहे का पुल बह गया और लगभग 50 श्रद्धालु फंस गए।

0: ये श्रद्धालु भरमौर में मां भगवती कुंदीवाली के मंदिर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाया। मौसम विभाग ने बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में आज अत्यधिक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में 23 अगस्त तक वर्षा जारी रहने का अनुमान है। नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में भारत के आयुष सेट्टी ने मौजूदा चैंपियन चीन के शी युची को हरा कर एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। पीवी सिंधु और महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी अब दूसरे दौर में पहुंच गईं। महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी ने स्पेन की निकोल कैरोला और कार्मेन जिमनेज की जोड़ी को हराया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कोलिंस फिलिमोन से खेलेंगे। उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के पहले दौर में म्यांमार की थेत हजार थुजार से मुकाबला करेंगी। डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई आमने सामने होंगे। आशीष सूर्या और अमृता प्रमथेश तुर्की के एमरेसोन मेज और यासेमेन बेक्टास से मुकाबला करेंगे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त बना ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। आज चौथे दिन का मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुननिहार समस्त श्रोताके आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रममे स्वागत अछि। हम छी अंजनी आओर हमरा सङ्गे छथि प्रतिभा प्रीति जी। प्रतिभा जी, अहूँके हमरा तरफसँ नमस्कार।
1: नमस्कार अंजनी जी, साथ ही समस्त श्रोताओंको प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। और अंजनी जी, कार्यक्रम की शुरुआत ही करते हैं हम सभी एक सुविचार के साथ। तो आज कबीरदास जी की वाणी हम लेके आए हैं। कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: हाँ हाँ, जे मतलब जे अहाँ के जे वाणी निकलै है, कहल गेल अछि जे बात जवान सँ आ तीर कमान सँ जँ निकलि जाइत अछि तऽ फेर वापस नहि आबैए। तहिना देखियौ, एखन जे चलि रहल अछि भगवानक पूजा, ईश्वरके आराधना या अल्लाहके आराधना करै छी, कोनो भी भगवानके जँ आराधना अपना सब करै छी तऽ मन क्रम वचन सबसँ शुद्ध भऽ कऽ करै छी। आओर मनुष्य जते भी छथिन, मनुष्य ओ ईश्वरके देन छथिन। आओर एक दोसरसँ प्रेम जखन अपना सब रखै छी तऽ अपना मनके शान्ति होइत आगू वाला के सेहो हम
1: सब। और इसके लिए सबसे पहले हमारी वाणी जो है वो मधुर
0: मधुर है,
1: मधुरता चाहिए उसमें, मधुर होनी चाहिए। क्योंकि मधुर और विनम्र वाणी से ही हम अपने अहंकार को समाप्त कर सकते हैं, दूसरे को भी सुख पहुंचा सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं दूसरों के कानों तक पहुंचने से पहले हमारे मुख से वो वाणी निकल रही है। तो इस बात को समझना होता है कि मीठी वाणी जो है हमारी जो रिश्ते हैं उन्हें भी मजबूत बनाती है, और विनम्रता और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है, ये तो हम सभी ही जानते हैं।
0: देखियो ना, कते लोग क्रोधो में जो कोनो बात बजता ना, और इतक सौम्यता से बजता, इतक सज्जनता हुनका में आबि जाए

0: छन आ मीठ बजता जे अहाँ के ओ चीज खराब नहीं लागत तो सही बात छे जे जतेक चीनी देबे ततेक मीठे हेते तो तहिना अपन सब के स्वभाव
1: और बोली में वाणी में चीनी डालने की भी आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप हमारे स्वभाव के अंतर्गत वो आता है कि हम किस तरह से बोलते हैं। कभी आप देखते हुएगा बहुत गुस्से में कोई रहते हैं और जो सामने वाले से बात करते हैं वो इतने अच्छे तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, उनकी वाणी इतनी मीठी होती है कि उनका गुस्सा कह सकते हैं कि छू मंतर हो जाता है। तो इस तरह से, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन सौम्यता से भरा हुआ है, आप खुश हैं, आपके मन में किसी तरह की कोई तनाव अवसाद नहीं है, फिर भी सामने कोई ऐसे व्यक्ति या व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दिख जाते हैं जो जिनकी वाणी, सबसे पहले वाणी ही बहुत कर्कश कह सकते हैं कि मिठास नहीं है बोली में, वाणी में, तो कर्कशता के कारण आपका मन शीतल है, सौम्य है, फिर भी बहुत देर आप सहती रहती हैं, बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता कहीं ना कहीं पार होने के बाद आपके मन में भी तनाव अवसाद भर जाता है कि ये क्या परिस्थिति है। तो इन सब चीज़ों से बचना हम सभी को होता है।
0: और आज के दिन के इतिहास में की सब खास से
1: देख लेते हैं, आज के दिन का इतिहास क्यों है, आज का दिन इतिहास के आईने में खास। तो 18 अगस्त यानी आज के दिन 1950 में असम में 8.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। आज ही के दिन 1868 में फ्रांसीसी खगोलविद पियरे जेनसिन द्वारा हीलियम की खोज की गई थी। महान संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था 1872 में। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में बता दें, भारत के एक महान शास्त्रीय संगीतकार, गायक और संगीत शिक्षक थे। उन्होंने संगीत को शिक्षा को व्यवस्थित करने के लिए पलुस्कर पद्धति यानी कि नोटेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसकी शुरुआत की थी ताकि संगीत को लिखकर भी सीखा जा सके। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न राजनीतिक सभाओं में रघुपति राघव राजा राम और वंदे मातरम जैसे गीतों को गाकर देशवासियों में देशभक्ति की भावना भरी थी। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस के विमान दुर्घटना में निधन की भी आधिकारिक रूप से पुष्टि आज के दिन यानी 18 अगस्त 1945 में की गई।
0: तो छल आज के दिन के इतिहास में की सब खास और समय भ गए अपना सबके कार्यक्रम में मैथिली सुगम संगीत सुनवाक। तो पहले सुन ले मैथिली सुगम संगीत।

0: बहुत ही प्यारा संगीत। और अभी जो ये श्रावण महीना है, इसमें जो शिव पार्वती के जो भजन हम सभी सुनते हैं, गीत सुनते हैं, तो फिर मन और भी भक्ति भाव से भर जाता है।
1: यह मास एहन है प्रतिभा जी, जे भोला बाबा के संपूर्ण परिवार पूजा हो।
0: बिल्कुल,
1: एखन जे तुरंत खत्म भेली अपन सबके नवविवाहिता के पावनि, उहो में हुनकर संपूर्ण परिवारक पूजा होइ छन। कारण की छे जे गणेश भगवान जे प्रथम में पूज्य छथिन, हुनकर त पूजा हेवे करै छन। माँ मनसा जे नाग देवी छथिन, ओ हुनकर मानस पुत्री छथिन भोला बाबा के। फिर माता गौरी के पूजा, जे सुहाग दै छथिन, सौभाग्य दै छथिन स्त्री के। और महादेव जे संपूर्ण जगत के पालनहार छथिन।
0: बिल्कुल, सृजनकर्ता, पालनकर्ता, विनाशकर्ता, जो भी कहे, जो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो खासकर इस श्रावण महीने में पूरे देखिएगा, हर तरफ वातावरण ही पूरा भक्ति में बना हुआ रहता है, सब कोई भक्ति में सराबोर रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही मनभावन लगता है यह खास करके श्रावण महीना। और अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, समय हो चला है सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जानने की। तो अब हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हैं अंजनी कुमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को।
1: धन्यवाद प्रतिभा जी, आप सुनो हमरा सा हालचाल। सावनक तेसर सोमवारी यानी काल ठाम ठाम श्रद्धालु सभक भीड़ देखल गेल। ओतय बिरौल प्रखंड के देकुली धाम महादेव द्रवेश्वर नाथ धाम में भक्तक भीड़ के देखैत भोर 3 बजे से मुख्य द्वार पर कतार लाग गेल छल, जे दुपहर धरि रहल। मंदिर प्रबंधन के दिस से एहि के लेल सुरक्षाक विशेष प्रबंध कयल गेल छल, प्रशासन के सेहो व्यवस्था कयल गेल छल। नागपंचमी के अवसर पर जाले प्रखंड के क्षेत्र सब में गाम सब में सोम दिन नागपंचमी के पावनि पारंपरिक रीति रिवाज आ श्रद्धाक संग मनायल गेल। श्रद्धालु सब परंपरा के अनुसार पोखरि आ नदीक किनार सँ कुसुखारी को घर आनि आ प्रतीकात्मक नाग देवता के पूजा अर्चना कयलनि। पुरान नागबिल सब में दूध लावा अर्जित कऽ नाग देवता के पूजा कयलनि। केंद्र सरकार के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के दिस संचालित सिटी एक्सेलेटर प्रोग्राम में दरभंगा के शामिल कयल गेल अछि। एकरा संगे गया, मुंगेर आ भागलपुर सेहो एहि कार्यक्रम सँ जुड़ि गेल अछि। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह

0: दरभंगा नगर विधायक संजय सराबगी एकरा दरभंगा आ मिथिला के लेल महत्वपूर्ण उपलब्धि बतौलनि अछि। वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी सोम दिन प्रशिक्षण प्राप्त कऽ रहल 251 गोट नवनियुक्त सिपाही सबके अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, कानून के जानकारी आ कर्तव्य निष्ठा से जुड़ल महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिलन। एहिमे खगड़िया जिला बल के 174 आ शिवहर जिला बल के 77 गोट सिपाही शामिल छला। प्रशिक्षण के दौरान SSP कहलनि जे अनुशासन पुलिस सेवा में बहुत आवश्यक अछि। आगामी 12 सितंबर के आयोजित होबय वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारी के लऽ कऽ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा ADR भवन में विभागीय आ बैंक अधिकारी सभक बैसार भेल। एकर अध्यक्षता प्राधिकार के सचिव आरती कुमारी कयलनि। सचिव विद्युत, माप तौल, श्रम आ अन्य विभाग सब से संबंधित मामला सभक अद्यतन सूची तैयार करबाक निर्देश देलनि। हनुमान नगर प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय कोल्हंटा पटोरी में बच्चा सबके स्वतंत्रता दिवस में भाग लेबाक लेल प्रोत्साहित करबाक आ प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेबाक लेल विद्यालय के संगीत शिक्षिका मेनका कुमारी के शील्ड आ सहभागिता प्रमाण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यानंद ठाकुर द्वारा सोम दिन देल गेल। जिला शिक्षा विभाग आ जिला एड्स नियंत्रण इकाई के संयुक्त तत्वावधान में RNM गर्ल हाई स्कूल परिसर स्थित किलकारी में कक्षा 8, 9 आ 11 के विद्यार्थी सबके लेल रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल। प्रतियोगिता के उद्देश्य विद्यार्थी सबके HIV/AIDS के प्रति जागरूक केनाय आ किशोरा अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी उपलब्ध करेनाय छल। प्रतियोगिताक उद्घाटन जिला विज्ञान समन्वयक राम बुझावन यादव रमाकर, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य जयवीर सिंह यादव सहित कतेको गणमान्य व्यक्ति सब दीप प्रज्वलित कऽ कयलनि। सोम दिन रोसरा थाना परिसर पहुँच कऽ पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह जनता दरबारक आयोजन कयलनि। एहि दौरान उपस्थित लोक सब अपन सब समस्या SP के समक्ष रखलनि। SP लोक सबके शिकायत के गंभीरता से सुनि संबंधित पुलिस पदाधिकारी सबके त्वरित कार्रवाई आ समस्याक निष्पादन करबाक निर्देश देलनि। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति राम जानकी मंदिर गोविंदपुर लहरियासराय के बैसार में पूजा समिति के बैसार में पूजा समिति के पुनर्गठन कयल गेल। नवनिर्वाचित बबलू चौधरी कहलनि जे दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं अछि बल्कि पूरा ग्रामीण समाजक आस्था, एकता आ भाईचारा के पावन अछि। सब गोटेक सहयोग से पूजा श्रद्धा, अनुशासन, शांति आ सामाजिक सौहार्दक संग सफल बनेबाक प्रयास करबाक चाही। एखन अपने सब सुनि रहल छी हाल चाल।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: से हालचाल विरामक पश्चात लगभग 30 वर्ष से बंद पड़ल चीनी मिल के पुनः चालू कयल जात। आगामी 20 नवंबर के एकर आधारशिला राखल जात। चीनी मिल के

0: पुनः संचालन के लौ कर विभाग के वरीय पदाधिकारी के संग लगातार चर्चा चल रहल अछि। ई गप सोम दिन दरभंगा प्रेक्षागृह में गन्ना उद्योग विभाग के तत्वावधान में आयोजित गन्ना किसान संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार कहलें। ओ कहलें जे गन्ना उद्योग आबय वाला समय में रोजगार के बड़का संसाधन बनत, जाहिसँ युवा के रोजगार के अवसर प्राप्त हैत आ किसान सबके आर्थिक मजबूती सेहो हैत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग अध्यक्ष बनायल गेला प्रोफेसर विजय कुमार मंगल दिन आ कार्यभार सेहो संभाल लेला। विभाग अध्यक्ष पद पर 3 बरस कार्यकाल पूरा कऽ चुकल प्रोफेसर उमेश कुमार कहलनि जे हुनका विधिवत प्रभार देल गेल अछि। एहि अवसर पर प्रोफेसर विजय कुमार कहलनि जे पढ़नाइ आ पढ़नाइ दुनिया के सबसे नीक काम अछि। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के बीच अध्ययन अध्यापन के गुणवत्ता बनेनाइ जरूरी अछि। शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण केनाइ के माध्यम नहि अछि बल्कि व्यक्तित्व निर्माण के आधार अछि। प्रोफेसर उमेश कुमार कहलनि जे प्राध्यापक कखनो रिटायर नहि होइत छथि, अध्यापन के जीवन भरि निभेनाइ जाय वाला जिम्मेदारी बतबैत ओ अपन कार्यकाल में मिलल सहयोग आ स्नेह के प्रति आभार व्यक्त कयलनि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PhD एडमिशन टेस्ट 2024 के अर्हताधारी अभ्यर्थी सब के लेल राहत के खबर अछि। कुलाधिपति विश्वविद्यालय के PAT 2024 के प्रक्रिया आगू बढ़बैत नामांकन पूर्ण करबाक अनुमति प्रदान कयलनि अछि। राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव संजय कुमार एहि संबंध मे 11 अगस्त के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पत्र भेज आवश्यक निर्देश देलनि अछि। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे मैथिली भाषा के शिक्षक अभ्यर्थी के बिहार सरकार सौगात दिलक अछि। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 के विज्ञापन में मैथिली भाषा के शिक्षक के लेल रिक्ति के शामिल कयल जायत। सांसद एकरा मिथिला क्षेत्र के युवा के लेल रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर बतौलनि अछि। ओ बतौलनि जे 5 अगस्त के ओ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सँ मिलल छलथि, जाहि मे TRE 4 में मैथिली भाषा शिक्षक के रिक्त पद के शामिल करबाक आग्रह केने छलथि। हुनक आग्रह पर शिक्षा मंत्री आवश्यक रिक्ति के आकलन आ रोस्टर कार्य पूर्ण कऽ अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग के भेजबाक निर्देश कयलनि अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक 6ठम सेमेस्टर सत्र 2023-27 के आंतरिक परीक्षा के लऽ कऽ सब अंगीभूत आ सम्बद्ध कॉलेज सब में पाठ्यचर्चा के अनुसार सब विषय के आंतरिक परीक्षा आयोजित करबाक लेल अधिकृत कयलनि अछि। विश्वविद्यालय जारी निर्देश में कहलक अछि जे आंतरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के ऑनलाइन माध्यम सँ विश्वविद्यालय के पोर्टल पर 20 अगस्त धरि अपलोड केनाइ सुनिश्चित कयल जाय। एकरा संगहि अंकक 2 प्रति परीक्षा विभाग में जमा करबाक आ 1 प्रति कॉलेज कार्यालय में सुरक्षित रखबाक लेल कहल गेल अछि। पत्र के संग मेजर आ माइनर विषयक क्रेडिट विवरणी सेहो भेजल जायत। एहि संग हालचाल सम्पन्न होइत अछि।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: एखन अपने से सुनने छल हाल चाल। और देखियो प्रतिभा जी, जीवन में हरेक चीज का अनुभव भेनाय आवश्यक छे। जो दुख है तो सुख एवाक आवश्यक तो छै हे। जखने दुख काटब तखने सुख हैत, एकर आशा से जो दुख काटि लै छी। किएकि देखियो जीवन में खट्टा मीठा भेनाइ आवश्यक छै। जखने बहुत लोग के छन जे बड़ मीठ नीक लगै छन,

0: लोक छन जे बड़ खट्टा नीक लगै छन, आ तेकर बाद जे मीठ के आवश्यकता पड़ैत अछि तऽ मीठ खाइ छै तऽ मन प्रसन्न भऽ जाइत अछि। आ जीवन तऽ
1: खट्टे मीठे की बात आपने की है, तो दिन है तो रात भी है,
0: रात
1: तो हम सभी को ये तो मान के ही चलना होता है कि हमारे जीवन में ये जरूरी नहीं है कि सुख ही सुख होंगे, हो सकता है कभी ऐसा हो
0: परिस्थिति परिवर्तन हो जाए,
1: सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए हम सभी को अपने आप को तैयार रखना होता है, खास करके मानसिक तौर पे हम सभी अपने आप को तैयार रखते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो। और अंजनी जी, कभी देखते होइएगा अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में कि किसी दिन आपके पास काम बहुत अधिक सामने आ जाता है, बिल्कुल, तो उस दिन हम यदि घबरा जाए कि आज हमसे इतना काम कैसे हो पाएगा, या बहुत सारे जो पीछे छूटे हुए काम है उन्हें भी आज ही पूरा करना होता है तो कैसे कर पाएंगे, तो जब हम घबरा जाते हैं और भी हतोत्साहित हो जाते हैं, तो जो हमारी क्षमता है वो और भी कम हो जाती
0: कम
1: है,
0: हो जाता है हाँ।
1: और जब हम पूरे एनर्जी से ऊर्जा के साथ कोई काम को करने की कोशिश करते हैं तो पिछले दिनों की अपेक्षा तुलना में हम और भी अधिक काम कर पाते हैं,
0: काम कर पाए।
1: सबके पीछे है कि अवसाद और तनाव को हमें
0: दूर रखबाक चाहिए। और देखियो ना, जे गर्मी जे पड़ित रहे अपना सबके, आ काल्हि से जे भेर झमाझम बारिश भेल अछि, तो अपना सबके मौसमों में तो परिवर्तन आबि गेल,
1: कुछ ना कुछ तो बदलाव आया है कि बहुत अधिक जो धरती में जो गर्मी है, बारिश नहीं होने के कारण जो वातावरण गर्म हो चुका है, तो पूरी तरह से बदलाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो राहत मिली है सभी को, तो यही है जीवन की भी कि कभी धूप कभी छांव, इस तरह की सामना हम सभी करते हैं। और अंजनी जी, एक चीज आप शायद भूल रही हैं कि मौसम की जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो हम अपने श्रोताओं को मौसम की जानकारी देते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 15 से 19 अगस्त 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के गोपालगंज, सारण, सिवान, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों के अनेक स्थानों पर पूरे पूर्वानुमान अवधि के दौरान गरज के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एवं अन्य जिलों में 15 से 18 अगस्त के आसपास की जो बात थी, गरज के साथ वर्षा होने की संभावना थी, तो 18 अगस्त से पहले 17 अगस्त को कुछ ना कुछ वर्षा तो देखा गया। और पूर्वानुमान अवधि के में ज़्यादातर समय आकाश में हल्के बादल या प्रायः आसमान साफ रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। सिवान जिले के कुछ स्थानों पर 17 अगस्त तक का ही था ये कि भारी वर्षा होने की संभावना थी, तो कुछ जगहों पे तो भारी वर्षा देखने को मिली है, पर कुछ स्थानों पर हल्के वर्षा देखने को, हल्की वर्षा ही हुई है वहाँ पर। इस दौरान अधिकतम तापमान के यदि हम बात करते हैं तो 33 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री के बीच सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और यदि सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो 80 से 90% तथा दोपहर के समय 50 से 55% के आसपास रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में हवाएं मुख्यतः पूर्वी दिशा से 5 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है।
0: तो छल मौसमक जानकारी। और प्रतिभा जी, अपने सब कार्यक्रम में और बातचीत करब श्रोता सब से, जे चर्चा आनने छी गप करे ले हुनका से, मुदा समय भ गेल अछि, एकटा फिल्म संगीत सुनवाक, आओ पहले सुन ले छी फिल्म संगीत।

0: इस गीत के माध्यम से भाई बहन के पवित्र रिश्तों की बात हमने की है। और आपने कहा था अंजनी जी कि श्रावण महीने में जो पूजा पाठ का जो माहौल है, और इसके साथ ये भी कहना चाहेंगे कि पर्व त्यौहार का भी सिलसिला अब शुरू होने को है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद हम सभी मनाने वाले हैं रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार।
1: और सावन मास जे छे ना प्रतिभा जी, जे सबटा द्वार खोल दे छे। हम अपन एखन का निकाल पहिने चर्चा इस बात के केने छलौं जे सबटा द्वार खोलबा के बात ई जे पावन त्योहार के शुरुआत भ जाइत अछि। और देखियो ना जे गीत एक दिन का गीत होइ छै त लोक कहै छथिन कि हाँ गीत छै आइ, और बहुत तैयारी करय पड़ै छै, मुदा एहिमे पख के हिसाब सँ तिथि के हिसाब सँ बारह दिन

0: 13 दिन 14 दिन के जे पड़ैत अछि पूजा, तऽ
1: जोकि
0: ई एतेक
1: मधुश्रावणी है।
0: उत्सवी माहौल रहैत अछि जे घरमे पूजा होइत अछि ओहि घरमे जे देखबै तऽ मोन हैत ओहि घरसँ उठि कऽ नहि आबी। तऽ ई जे पाबनि तिहार छै अपना सबके, ओ अपना सबके सिखाबैत अछि जे एक जगह बैस कऽ केना अपने लोक सब प्रेमसँ बतियाएब, प्रेमसँ गीत गाएब, ई तऽ एकटा प्रेमे छै ने प्रतिभा जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जे समाजमे अपना सब कतेक प्रेम यऽ अपना सबके समाजसँ, कतेक अपना सब समाज सबके सङ्गे चलै छी, आ पाबनि तिहारमे खास कऽ कऽ पाबनि तिहारमे खास कऽ कऽ एकजुट होयबाक अपना सबके आवश्यकता अछि।
1: बिल्कुल।
0: आओर होइतो छी।
1: बिल्कुल, त्यौहार की बात आपने की है, तो ये जो हमारा देश भारत है इसकी तो विशेषता ही है कि अनेकता में एकता। यहाँ देखिए ना, अलग अलग वेश वाले लोग रहते हैं, भाषा अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग तरह के संस्कृति को अपनाए हुए हैं। यहाँ के विभिन्न त्यौहार मनाने वाले लोग निवास करते हैं, कहीं पे कोई और त्यौहार मनता है, किसी क्षेत्र में विशेष कोई और त्यौहार मनता है, फिर भी इन सब का मूल संदेश क्या होता है, प्रेम, भाईचारा और मानवता की भावना। और त्यौहार के अवसर पर लोग एक दूसरे के घर में खुशियाँ मनाने के लिए तो जाते ही हैं, शुभकामनाएँ देते हैं। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य क्या होता है कि सामाजिक सौहार्द और समरसता को हम बनाए कैसे रख सकते हैं। जैसे आपने अभी बात की है कि 13 दिन तक चलने वाली जो ये अभी मधुश्रावणी की जो पूजा सम्पन्न हुई है, तो उसमें भी ये क्या था कि सबको एक साथ बैठ के बहुत प्यार से गीत नाद करते हुए और पूजा पाठ का जो माहौल था, तो इस तरह से। या फिर कोई और भी पर्व का आप उदाहरण लीजिए ना, होली का पर्व यदि हम सभी मनाते हैं, होली की पर्व में तो उसमें रंगों का ही त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। उसमें क्या गरीबी, क्या अमीरी, क्या बड़े, क्या छोटे, कुछ नहीं, सब एक तरह के रंग में रंगे हुए होते हैं, सबके घरों में खुशियाँ। और ये अपने आप में आप नहीं मना सकती, आप अपने घर में अपने दो चार लोगों के साथ क्या ही अच्छा लगता है। तो अपने सामाजिक में सामाजिकता को अपनाते हुए कोई भी त्यौहार हो, दीपावली की हम बात करते हैं या फिर छठ पूजा की बात कीजिए ना, देखिए छठ पूजा में क्या होता है कि सब कोई जो छठ पूजा करते हैं एक ही स्थान पर, कोई तालाब होता है नदी के किनारे जो ये मनाया जाता है, ये पूजा की जाती है, और एक ही ईश्वर सूर्य नारायण की जो आराधना की जाती है उगते हुए सूर्य को, और फिर अस्ताचलगामी, पहले शुरू में अस्ताचलगामी को तो अर्घ देते हैं, और एक ही वस्तु से भी आराधना की जाती है अंजनी जी। सब कोई एक ही तरह के पकवान बनाते हैं, हर किन्हीं के घर में वो बनता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई किसी भी तरह के पंडित की आवश्यकता नहीं होती, हर जो पर्व करने वाली होती हैं, जो पूजा करने वाली होती हैं माताएं बहनें, वो सब अपने आप में ये जो भावना है, श्रद्धा की भावना है और लोक आस्था का जो ये पर्व है, पूरे समाज में कह सकते हैं कि एकदम समरसता का बहुत ही बड़ा
0: प्रभाव रहैत अछि। आ दोसर बात की छै जे अगर एखन देखियौ प्रतिभाजी, जे शुरुआत केलहुँ अपने सब मधुश्रावणी पाबनिसँ, तऽ ओहिमे बूट बूट बटबाक अथी छै,
1: चना
0: ओहिमे हम देखै छी तऽ हमरा बड़ नीक लागे, किएक तऽ हर त्यौहारमे अपना सबके बेन बटबाक जरूरी छै, जे फलनाके बेन देबै चिल्ला, मतलब अगल बगल अपन मित्रके समाजमे अपन बाँटलहुँ, खुशी जाहिर केलहुँ। तऽ तहिना मधुश्रावणीमे चना बटबाके, चना फुला कऽ, फेर दीपावलीके चर्चा केलहुँ तऽ ओहिमे घर घर लोक जाइ छथि, अपनासँ नम्हरके प्रणाम करै छथि, आशीर्वाद लै छथि, आओर पूजामे शामिल होइ छथि, प्रसाद लै छथि, एक दोसरके शुभकामना दै छथि। होलीमे देखियौ, होलीमे सेहो छै रङ्ग बिरङ्गके व्यञ्जन पकवान बनाकऽ लोक सब गोटे एक सङ्गे खाइ छथि। तऽ ई सामाजिक समरसताके जे सन्देश छै ई अपने देशमे होइ छै, आओर अपन देशके लोक सब जतऽ जतऽ बसल छथिन विदेशोमे, ओतऽ वएह काज होइत अछि जे लोक सबके सङ्गे मिलकऽ एक दोसरके खुशी जाहिर करै छथि, आओर एहि खुशीमे जँ मिलजुलि कऽ अपने सब एक जगह एहि पर्व पाबनिके मनाबै छी तऽ ओकर खुशी अलगे रहैत अछि।
1: बिल्कुल। और क्योंकि हर त्यौहार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, जैसे कि आपने दीपावली की बात की है, तो दीपावली से हम ये सीखते हैं अंधेरे पर उजाले की जीत कैसे हो, कोई सब कोई हम मिलजुल कर रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पूरा गली मोहल्ला ही रोशन हो जाता है। और ईद की बात हम यदि करें तो ईद से भाईचारा और दान की जो भावना है वो सीख मिलती है हमें, एक दूसरे के घर पर मीठी सेवैयाँ बाँटते हैं, सबके साथ खुशियाँ मनाते हैं, और जकात के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद भी की जाती है। तो हर पर्व त्योहार से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारी जो जो भावना है वो विकसित होता है, उसमें समरसता की भावना।

0: का विकास होता है। बात करते हैं क्रिसमस की, तो इसमें प्यार और दया की भावना होती है, एक दूसरे को गिफ्ट बांटना होता है। चर्च में सबके साथ प्रार्थना करने से आपसी प्रेम और समरसता में वृद्धि होती है। इसी तरह गुरुपर्व की यदि बात करें अंजनी जी, तो गुरुद्वारे में बिना किसी भेदभाव के लंगर के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है, वहाँ किसी तरह की भेदभाव नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। कोई भी नहीं, सबके साथ एक तरह की
1: बात। अपने सब ईस्टर के, पोंगल के या बिहू के बात करी, तो ओहो में किसान हुआ या कारीगर सब मिलकर नाच गाना करे छथि, खुशी मनाबे छथि, आ एहि पर्व के माध्यम से प्रकृति और मेहनत के सम्मान करे छथि। लोक आस्था के पर्व छठि के तो अपना सब बात के भी केलूँ, अहाँ देखबे जे घाट पर कोनो जात पात के बंधन नहीं रहते, अमीरी गरीबी के बंधन नहीं रहते। अच्छा, एकटा और चीज जे सामा एखन अपने सब भाई बहन के पावन के गीत चलेने छलो, श्रोता सब के सुनेलो, तो कारण एहि में की छे जे एकटा एकटा अपन भाई बहन नहीं, पूरा समाजक भाई के लेल राखी बन्है छथिन सब बहन और खुशी जाहिर करै छथिन। ओहि दिन अजीब माहौल रहैए एकटा समाज में, जे भाई बहन के पावन खाली भाइये बहन के नहीं रहै छै, मातो पिता के पावन भ जाय छै।
0: बिल्कुल, बहुत ही तैयारियां करती हैं वो भी कि हमारे यहाँ और भी हमारे भी भाई आएंगे, हमारे बच्चों के भी भाई आ सकते हैं, या हमारी बेटियां जो है वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल कह सकते हैं कि रहता है पूरे ही समाज में, गांव मोहल्लों में।
1: आ दोसर की छे ने, एक दोसर के सुख दुख में हर चीज में हम अगर समाज के संगे चले छी, तो समाज हमरा लेल हमेशा खड़ा रहिए, कि परिवार तो अहिए, हमर परिवार तो हमर अहिए, मुदा जो समाज के संगे हर सुख दुख में प्रेम में सब चीज में अपने सब साथ दे छी, तो अपने सब समाज के देखबे जे समाज अपन सब के उन्नति के तरफ जेते, आ जखन समाज के उन्नति हेते तो अपना सब के तो उन्नति छै।
0: बिल्कुल, इसीलिए आवश्यकता होता है कि एक दूसरे के त्योहारों का हम सभी सम्मान करें, एक दूसरे की पर्व में शुभकामनाएं दें, और जरूरतमंद लोगों की भी सहायता कर सकते हैं।
1: देखियो ना, जे जरूरतमंद के गप के लो, तो कुम्हार जे सामा बनबे छथिन भाई बहन के पावन
0: के बर्तन जो बनाते हैं,
1: माटिक बर्तन बनबे छै, तो अपना सबके पावन तिहार में हुनका से जे खरीदे छी तो ओहिमे हुनको फायदा होइ छन, अपना सबके पावनो मिट्टी माटिक बर्तन में विशेष आवश्यकता होइ छै जे पावन वएह में कैल जाए तो ज्यादा शुद्ध होइ छै, तो शुद्धता जहाँ छै ओतय हुनकर जे आमदनी छन ओहो भ गेलन, हुनको पावन भ गेलन, अपनो सबके पावन।
0: समरसता की बात यदि करें तो जो बांस के बर्तन बनाने वाले होते हैं, देखिए ना कोई भी काम होता है हमारे यहाँ, तो जो अच्छा काम है, शुभ काम है, उससे लेकर के, और कभी कुछ ऐसा होता है किन्हीं के घर में जो डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती है, उसमें भी बांस के बर्तन का काम, तो सब कोई वहीं से लाते हैं जहाँ पे वो बर्तन बनाने वाले होते हैं। और छठ की बात हमने की थी तो सबके यहाँ नए नए जो बांस के बर्तन बहुत सारे लेके आते हैं हम सभी, और सब एक साथ, तो समरसता तो इस तरह से हम सभी को देखने की मिलती है, और सामूहिक सेवा का कार्य भी पर त्योहार पे होता है। त्योहार पर गरीब जो निर्धन वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर दिव्यांग हैं, या फिर जरूरतमंद लोग हैं, उनकी यदि हम सहायता करते हैं, ये सोच के नहीं कि मेरे पास बहुत अधिक है, ये सोच के कि क्या होगा, मेरे पास तो है ही और इनके पास ये सामान नहीं है। अच्छा, आपस में भी तो ये होता है ना कि आपके पास, आपके यहाँ नींबू का पेड़ है या कुछ ऐसा है, तो या अमरूद का पेड़ है, तो आप उसको जो तोड़ती हैं, बहुत अधिक रहता है आपके पास, तो आप अपने पड़ोस वाले को, पड़ोस में या अपने जो अगल बगल में जो हैं उन्हें आप भेजती हैं, तो इस तरह से समरसता का ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है।
1: उदाहरण जी, अपन सबके त्यौहार पावन तिहार जो अपना सबके सामाजिक समरसता समरसता के संदेश देते हैं,
0: और स्वच्छता के माध्यम से भी होता है, जो त्योहार में जो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, पौधारोपण कह सकते हैं, इसमें भी समरसता या सामाजिक समरसता की बात हम कह सकते हैं, कचरा प्रबंधन कभी देखिएगा कहीं पे बहुत अधिक गंदगी है, तो सब कोई मिलजुल के, समाज के चार लोग खड़े हो जाते हैं तो मिलजुल के वो काम करते हैं, तो फिर क्या कहने कि सब एकदम बहुत ही अच्छे से होता है। और कार्यक्रम में गुणवत्ता बना के रखने के लिए हम फिल्म संगीत की ओर आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, आइए सुनिए और आनंद लीजिए।

0: बहुत सुंदर गीत
1: गप
0: करवा के तो बहुत मन हो श्रोता सब से मुदा समय तो नहीं अनुमति दिए
1: तो फिर मिलेंगे अगले अंक में तब तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
0: और अंजनी के दियो विदा
1: नमस्कार।

0: भोर होते उठ जाओ किएक इजोतक पहल किरण संग फुलाय लगत फूल प्रकृति में घोराय लगत ऊर्जा आबावला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नै हैत त खेती नै हैत आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत त हमरा लोकन खायब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोग खाब की।
1: मामा बने जाने मामा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
5: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
6: घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा और निजी एजेंसी TDPL द्वारा संचालित सभी अन्य भर्ती परीक्षाएं रद्द की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC उम्मीदवारों के 24 दिन से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC, CGL परीक्षा 2024 और TDPL एजेंसी द्वारा संचालित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल शाम मंत्रिमंडल की विशेष बैठक के बाद ये घोषणा की।
10: पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। जो हमें जानकारी TDL को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद कैबिनेट ने CGL को भी रद्द करने का निर्णय लिया।
9: और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
11: सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कराने के साथ परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है। इस बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ विधायक जयराम कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर देवेंद्र नाथ महतो और अन्य आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और JPSC JSSC न्याय मंच ने फिलहाल आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। वहीं छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कथित अनियमितताओं की CBI जांच का आदेश होने तक रिफॉर्म मंच का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार के फैसले के बाद JSSC CGL के जरिए पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों ने भी विरोध जताया और रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटकर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
9: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की है और इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों के लिए मॉडल बताया है। उन्होंने भारत की निर्वाचन

0: प्रणाली को चुनावी सुरक्षा का उदाहरण बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल उठाया था कि बिना अनिवार्य वैध फोटो पहचान पत्र के अमरीका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। श्री ट्रंप ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए अमरीकी कांग्रेस से सेव गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी यानी सेव अमेरिका अधिनियम पारित करने को कहा। ये प्रस्तावित विधेयक संघीय चुनाव में मतदान के लिए और अधिक सख्त नियम लागू करने की मांग करता है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि यह बैठक महत्वपूर्ण विचार विमर्श, सर्वसम्मति तक पहुंचने और पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने का मंच उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। यह कार्यक्रम भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 की मुख्य थीम सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। यह बैठक सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगी। अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के तहत केंद्रित गतिविधियों के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा के प्रति दृढ़ताशील, सर्कुलर इकोनॉमी और अनुकूलन शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। कल काठमांडू के शीतल निवास में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव तथा नेपाल सेना और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। जनरल धीरज सेठ नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल के निमंत्रण पर रविवार को नेपाल पहुंचे थे। मानद पद प्रदान करने की ये परंपरा वर्ष 1950 में शुरू हुई थी। इसके तहत भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल का मानद रैंक प्रदान करते हैं। जनरल धीरज सेठ ने जनरल सिग्देल के साथ द्विपक्षीय सैन्य संबंध बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने भारतीय दूतावास में राजदूत नवीन श्रीवास्तव से भी भेंट की और दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल सेना को भारत की ओर से सैन्य और चिकित्सा उपकरण भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य, कराईकल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरलम और माहे में भी गुरुवार तक तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की तेज वर्षा जारी है। राज्य में कल अधिकांश स्थानों पर बहुत तेज बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: बीते 24 घंटों के दौरान मंडी जिले के कटौला में सर्वाधिक 74 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार इस मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 994 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज राज्य के 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, शिमला और सोलन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आंध्र प्रदेश के डॉक्टर B.R. अंबेडकर कोनासीमा जिले से मछुआरों को ले जा रही मछली पकड़ने की एक नौका समुद्र में लापता हो गई है। ये मछुआरे

0: महीने की 3 तारीख को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और उन्हें 10 दिन के भीतर वापस लौटना था। उनके वापस न लौटने पर परिवार वालों ने अधिकारियों को सूचना दी। तटीय पुलिस और मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने लापता मछुआरों की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। केरलम में विझिंझम समुद्री बंदरगाह से आज से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन आज इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
1: विझिंझम समुद्री बंदरगाह अब तक मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्र के तौर पर काम कर रहा था, जहां मदरशिप कहे जाने वाले बड़े जहाजों से आने वाले कंटेनर को आगे ले जाने के लिए छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता था। इस बंदरगाह को 17 जुलाई को निर्यात और आयात के लिए मंजूरी मिली थी। शुरुआत में विझिंझम बंदरगाह से सिर्फ फुल कंटेनर लोड कार्गो का आयात निर्यात होगा। इस बंदरगाह का पिछले वर्ष 2 मई को उद्घाटन किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यक्ति को हमेशा आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सच्चा पुरुषार्थ इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे। गोल में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी के आधार पर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 284 रन पर समेट दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे और आज चौथे दिन का मैच भारतीय समयानुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। और अब खबरें नई दिल्ली में आयोजित BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की।
2: नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पहले राउंड में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ शुरुआत की। खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने पुरुषों के एकल श्रेणी में मौजूदा चैंपियन और दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी चीन के शी युकी को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। वहीं महिलाओं की एकल श्रेणी में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 और 21-11 से आसानी से हरा दिया। साथ ही महिलाओं की युगल श्रेणी में भारत की जोड़ी ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंदन ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेस को 21-9 और 21-13 से हरा दिया। इससे पहले पुरुषों की युगल में भारत की जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने दूसरे राउंड में जगह बनाई। दूसरे गेम में यह जोड़ी 6-4 से आगे चल रही थी, तभी आयरलैंड के उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट गिल्टिया और पॉल रेनॉल्ड्स को चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा। अर्जुन और अमसा करुण ने पहला गेम 21-16 से जीत लिया था। विष्णु और भानु की रिपोर्ट के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा और झारखंड में छात्र आंदोलन के असर के समाचार छाए हुए हैं। पंजाब केसरी के मुख पृष्ठ पर पहला समाचार है, अब नितिन की नवीन टीम। पत्र ने उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, राम माधव, महासचिव स्मृति ईरानी और कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल के चित्र भी सबसे ऊपर प्रकाशित किए हैं। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, भाजपा की नवीन टीम 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। जनसत्ता में इस समाचार की सुर्खी है, माधव और ईरानी की वापसी, अमित मालवीय की हुई छुट्टी। हिंदुस्तान का शीर्ष समाचार है, टीम नवीन में जोश होश का मेल। नवभारत टाइम्स ने झारखंड के घटनाक्रम को पहला समाचार बनाया है, कई फजीहतों के बाद NTA ने बदली अपनी टीम, 600 एक्सपर्ट्स हटाए। पत्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के निर्देश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को बॉक्स प्रकाशित करते हुए आंदोलनरत छात्रों की तस्वीर भी प्रमुखता से प्रकाशित की है। दैनिक ट्रिब्यून ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चित्र सहित इस खबर को शीर्षक दिया है, झारखंड आउटसोर्स एजेंसी की 2014 से अब तक कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द। राजस्थान पत्रिका ने रेल यात्रियों की सुविधाओं की उपेक्षा और अनदेखी को संपादकीय का विशेष बनाया है। पत्र कहता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले हैं। सवाल सिर्फ पानी के पीने का साफ होने का नहीं है, यात्रियों की दूसरी सुविधाओं की भी समयबद्ध जांच और सतत निगरानी करनी चाहिए, चूंकि यात्री सुविधाओं कोई भी अनदेखी चिंताजनक है। लोकसत्ता ने नाग पंचमी के अवसर पर महाकाल मंदिर उज्जैन

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनक्किद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए एक मिसाली नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स गुजराए माहौलियात के 12वें इजलास की मेजबानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी यू की को शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। झारखंड हुकूमत ने रियासत में तलबा के 24 दिन तक जारी रहने वाले एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को मनसूख कर दिया है। हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनक्किद कराए गए दीगर तमाम भर्ती इम्तिहान भी रद्द कर दिए हैं। इस ऐलान के बाद रांची में एहतजाज के मकाम पर तलबा ने जश्न मनाया। ताहम CBI जांच का मुतालबा अभी पूरा नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड हुकूमत ने JSSC CGL इम्तिहान और TDPL एजेंसी के जरिए मुनक्किद किए गए तमाम मुसाबकती इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है। इसके अलावा हुकूमत ने 2014 से अब तक मुनक्किद किए गए JPSC और JSSC के भर्ती इम्तिहान की तहकीकात का भी ऐलान किया है। यह फैसला वज़ीर आला हेमंत सोरेन की सदारत में मुनक्किदा काबीना की खसूसी मीटिंग में लिया गया। एहतजाज करने वाले तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस फैसले का खैर मकदम किया और मिठाइयाँ तकसीम करके और एक दूसरे को गुलाल लगा कर जश्न मनाया। हुकूमत ने 2014 के बाद से JPSC और JSSC के जरिए किए गए भर्ती के अमल की जांच करने और इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात की सिफारिशात पेश करने के लिए IAS ऑफिसर अमिताभ कौशल की सरबराही में एक कमेटी तशकील देने का भी फैसला किया है। इस दौरान रियासती वजीर दीपिका पांडे सिंह, वजीर सेहत इरफान अंसारी और रुकन असम्बली जयराम कुमार ने सदर अस्पताल का दौरा किया और देवेंद्र नाथ महतो समेत एहतजाज करने वाले दीगर तलबा की भूख हड़ताल जूस पिलाकर ख़त्म कराई। देवेंद्र नाथ महतो ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस फैसले से उनके अहम मुतालबात पूरे हो गए हैं। JPSC, JSSC न्याय मंच ने भी ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपना एहतजाज मुअत्तल कर रहा है। तलबा रहनुमा रविंद्र पासवान ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। ताहम उन्होंने कहा कि रिफॉर्म मंच मुबैना बेजाब्तियों की CBI जांच का हुक्म जारी होने तक अपना एहतजाज जारी रखेगा। हुकूमत के फैसले के बाद उन उम्मीदवारों में भी एहतजाज शुरू हो गया जिन्हें पहले ही JSSC CGL इम्तिहान के जरिए मुलाजमत के लिए मुंतखब किया जा चुका है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे सख्त अमरीकी इंतखाबी जाब्तों के लिए मिसाल करार दिया है। जनाब ट्रंप ने भारत के इंतखाबी तरीक़ेकार को इंतखाबी जांच पड़ताल के लिए

0: कंटेनर लोड और FCL कार्गो ही इस्तेमाल होंगे। इस बंदरगाह को गुज़श्ता साल 2 मई को मुल के नाम वक्फ किया गया था। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुर्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजर सानी SIR के लिए साल 2002 को बुनियाद बनाने से मुतालिक इंतखाबी कमीशन के फैसले में मदाखलत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कल एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से दायर की गई मफादे आम्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। इस अर्जी में चुनाव कमीशन को यह हिदायत देने की दरख्वास्त की गई थी कि सिक्किम में जारी SIR के लिए साल 2002 के बजाय साल 1993 को बुनियाद बनाया जाए। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जारी SIR के लिए यकसा तौर पर 2002 को बुनियादी साल मुकर्रर किया है, क्योंकि आखिरी मरतबा ऐसी नजरसानी उसी साल की गई थी। तहम बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार मुनासिब रियायत के लिए इंतखाबी कमीशन से रुजू कर सकता है। तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तहानात मुनक़द कराने वाली कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ़ ने इम्तहानात से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप्ड सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनक़ते निज़ाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया कि वो सभी इम्तहानात के अमल की तफसीली जाँच करे और इसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज झारखंड में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात से मुतालिक एजेंसी ने बिहार, छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, शुमाली मशरक़ी रियासतों, कराईकल, पुडुचेरी, केरलम और माहे में जुमेरात तक शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और अंडमान निकोबार जजायर में अगले 2 से 3 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज हवाओं की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून का सिलसिला जारी है। गुजशत 24 घंटे के दौरान रियासत भर में बेशतर मकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। कई मकामात पर बारिश के सबब मामूलात जिंदगी मुतासर हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुजशत 24 घंटे के दौरान मंडी जिले के कटोला में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासर है। मूसलाधार बारिश और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से तकरीबन 87 सड़कें बंद हैं, 80 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि तकरीबन 994 करोड़ रुपये की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज उत्तराखंड के गढ़वाल खित्ते के पहाड़ी जिलों में इंतहाई शदीद बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक रियासत में बारिश का सिलसिला जुमे के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि किसी शख्स को चढ़ते सूरज के सामने नहीं झुकना चाहिए और यही असल शुजात है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम शेयर करते हुए ये बात कही। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन चीन के शी यू की को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में हरा दिया। आयुष ने शी यू की को 21-14, 13-21 और 21-19 से शिकस्त दी। ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर मुश्तमिल खवातीन की डबल्स की जोड़ी और मायानाज खिलाड़ी PV सिंधु भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। खवातीन के सिंगल्स में सिंधु ने आयरलैंड की सोफिया नोबेल को 21-7 और 21-11 से शिकस्त दी। खवातीन के डबल्स में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने स्पेन की पौला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को सीधे सेटों में 21-9 और 21-13 से हरा दिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शायब होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की सदारत में मुनक़िदा ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि इस मीटिंग में आलूदगी, हयातियाती तनवु, शजरकारी और सर्कुलर मईशत के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ रियासतों में ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्द ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए इसे तबाह कर दिया।

0: किया है। रोजनामा प्रताप ने मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि तकनीक पर मबनी पेंशन खिदमात की फराहमी से माली वसाइल में नुमाया बचत हुई है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। झारखंड सरकार ने 24 दिन तक जारी रहने वाले तलबा एहतजाज के बाद JSSC CGL इम्तिहान को रद्द कर दिया है। झारखंड हुकूमत ने प्राइवेट एजेंसी TDPL के जरिए मुनाकिद कराए गए तमाम दीगर भर्ती इम्तिहान भी मनसूख कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वोटर शनाख्ती कार्ड निज़ाम की तारीफ की है और इसे अमरीका में मजीद सख्त इंतखाबी कवानीन के लिए मिसाल नमूना करार दिया है। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए माहौलियात के 12वें इजलास की मेज़बानी करेगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल धीरज सेठ को नेपाल के सदर रामचंद पौडेल ने काठमांडू में नेपाली फौज के एजाजी जनरल का ओहदा अता किया। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज झारखंड में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में आयुष शेट्टी ने आलमी नंबर एक और दिफाई चैंपियन शी युकी को शिकस्त दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
6: तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम है ना। सिंपल, ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
7: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर तो आप क्या करेंगे?
9: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
8: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में,
9: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
8: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना।
10: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य को दे आकार।
8: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
10: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान की होगी शुरुआत। पटना उच्च न्यायालय ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगायी।

ई ट्राइब योजना के पहले चरण के तहत प्रदेश के 23 जिलों में 139 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और वैशाली समेत 9 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान की आज से शुरुआत होगी। अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति आबादी वाले सभी टोलों में 22 प्रमुख सरकारी योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना है। अभियान के तहत अगले 6 महीने तक हर गुरुवार को अनुसूचित जाति के टोलों और क्लस्टरों के पास विकास शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों से पहले ही जरूरतमंद लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। शिविर स्थल पर ही पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश की सभी पंचायतों और नगर निकायों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। आम लोग अपने नजदीकी सहयोग शिविर में पहुंचकर शिकायत, सुझाव या समस्या से संबंधित आवेदन दे सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में सरप्लस शिक्षकों के निर्धारण और स्थानांतरण प्रक्रिया में विसंगतियों तथा पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। राज्य सरकार ने जनगणना 2027 के सफल और सुचारू संचालन के लिए जनगणना कार्य में लगाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉक्टर महेंद्र पाल ने जारी आदेश में कहा है कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, कोषांग कर्मियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण अगले वर्ष 31 मार्च तक नहीं किया जाएगा। आदेश के अनुसार अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने पटना प्रमंडल के आयुक्त और 5 जिलों के जिलाधिकारियों समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 4 अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार को पटना प्रमंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। वहीं निवर्तमान आयुक्त मयंक बरबड़े को निगरानी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। मनीष कुमार मीणा को भोजपुर, तनय सुल्तानिया को सीतामढ़ी, रिची पांडे को बेगूसराय, विजय प्रकाश मीणा को सिवान और कुमार अनुराग को कैमूर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। पीएम ई ट्राइब योजना के पहले चरण के तहत प्रदेश के 23 जिलों में 139 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चिन्हित स्थलों का साइट सर्वे शुरू हो गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की टीम 17 से 20 अगस्त तक विभिन्न जिलों में प्रस्तावित स्थलों का सर्वे करेगी। पहले चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा और छपरा में 72 स्थानों का सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गया में विकसित किए जा रहे एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी आईएमसी परियोजना से संबंधित भूमि की रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाएगी। परियोजना क्षेत्र में सड़क और जलापूर्ति की सुविधा इस साल के अंत तक बहाल कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने की। बैठक में बिहार की औद्योगिक आधारभूत संरचना और पर्यटन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य में 725 स्थानों पर ग्रामीण हाट विकसित की जाएंगे। इसके लिए चिन्हित स्थलों की समीक्षा के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। ग्रामीण विकास विभाग और नाबार्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार

0: पाल ने बताया कि पहले चरण में नाबार्ड की वित्तीय सहभागिता से 20 से 49 डिसमिल क्षेत्रफल वाले स्थानों पर एक एक ग्रामीण हाट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 जिलों अररिया, बांका, भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल और समस्तीपुर से ग्रामीण हाट के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। इन हाटों के बनने से जीविका दीदियों को अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचाने और बेचने में सुविधा होगी। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए ई बाल अधिकार पोर्टल शुरू किया है। अब राज्य या राज्य से बाहर आ रहे बिहार के बच्चे और उनके अभिभावक घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए आयोग कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने बताया कि पोर्टल पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अधिकारों के उल्लंघन और बाल श्रम जैसे मामलों की शिकायत निःशुल्क दर्ज की जा सकेगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। एम्स पटना में बिहार का पहला लिविंग टोनर लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। सर्जिकल गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर राजू अग्रवाल ने बताया कि पटना निवासी 54 वर्षीय पुरुष में उनकी पत्नी के स्वस्थ लीवर का एक हिस्सा प्रत्यारोपित किया गया। उन्होंने बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर फॉर लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की टीम के समन्वय के साथ किया गया।
2: तो ये बिहार राज्य का जो पहला लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट है, तो हम गर्व महसूस करते हैं कि एम्स पटना में हुआ है। हाँ, जटिल जो सर्जरी की प्रक्रिया है, हमारे पास वो एक्सपर्टाइज है करने का, और ये बिहार के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है। तो एम्स पटना की सफलता नहीं है, बिहार राज्य की भी सफलता है कि यहाँ के मरीजों को ये सुविधा मिलेगी और उनको कहीं दूर दिल्ली या कहीं बॉम्बे या ऐसी मुंबई जगह जाना नहीं पड़ेगा।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन और अनुमति आवेदन का अंतिम अवसर दिया है। अब तक पंजीयन से वंचित विद्यार्थी आज से 22 अगस्त तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। नीट यूजी 2026 और पुनर्परीक्षा 2026 में कथित धांधली की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने स्कॉलर बैठाने वाले 17 मूल परीक्षार्थियों का नाम और पता समेत पूरा ब्यौरा राष्ट्रीय परीक्षा

0: एजेंसी से मांगा है। ईओयू के एडीजी अमित कुमार जैन ने ये जानकारी दी। राजधानी पटना सहित 9 जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की ट्रफ रेखा अभी पटना से गुजर रही है, इसके चलते राज्य के दक्षिणी हिस्सों में 19 अगस्त तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सिवान, वैशाली और सारण जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 18 अगस्त को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा और रोहतास जिलों में भारी बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, भभुआ और गया जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। सारण, सिवान और वैशाली जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

0: विभाग ने आज बक्सर, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सिवान, वैशाली और सारण जिले में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 18 अगस्त को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। बक्सर, जहानाबाद, नवादा और रोहतास जिलों में भारी बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, भभुआ और गया जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम हिस्सों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। सारण, सिवान और वैशाली जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
0: बिहार ने 16वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। डिवीजन बी के ग्रुप बी में बिहार की टीम ने अपने चौथे और अंतिम लीग मैच में तमिलनाडु को 5-1 से पराजित किया। इस जीत के साथ बिहार ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा और अगले सत्र में भी डिवीजन बी में खेलेगा। पटना जिले के बख्तियारपुर के रानीसराय जहाजी घाट पर एक ही परिवार की 7 लड़कियां गंगा में डूब गईं। हादसे में 3 चचेरी बहनों की मौत हो गई जबकि 3 किशोरियों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक युवती अब भी लापता है जिसकी तलाश जारी है। वहीं कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरसंडा गांव के पास बरंडी नदी के कमला घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने 4 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के उसराह गांव के पास 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 डाक पंप सेवकों की मौत हो गई। वहीं मुंगेर जिले के कच्ची कांवरिया पथ पर हृदय गति रुक जाने से समस्तीपुर और रोहतास जिले के 2 कांवरियों की मौत हो गई। सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच और छापेमारी अभियान के दौरान 342 किलो गांजा जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ की घटना की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अशोक धाम में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। धक्का मुक्की में बिजली का पोल गिरने पर फैली करंट की अफवाह। प्रभात खबर की सुर्खी है, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च, सीएम बोले छात्रों की समस्याएं खत्म होंगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार, जेपीएससी और जेएसएससी की विवादित नियुक्ति परीक्षाएं रद्द। दैनिक भास्कर लिखता है, भाजपा की नवीन टीम, 12 महिलाएं, 7 अल्पसंख्यक और 6 नए महासचिव। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान। आज अखबार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के हवाले से लिखा है, किसी भी हाल में ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में आज से संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान की होगी शुरुआत। पटना उच्च न्यायालय ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगाई। पीएम ई ड्राइव योजना के पहले चरण के तहत प्रदेश के 23 जिलों में 129 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और वैशाली समेत 9 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
3: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
2: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
3: गन्ना उद्योग

0: लोक विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

सामीन, आप बेगम अख्तर की आवाज़ में सुदर्शन फ़ाकिर के इस कलाम को समाप्त कर रहे थे और

0: जैसा कि हम तमाम लोग इस बात से आगाह हैं कि हमने अपने जहन दिमाग को नई ताज़गी बख्शने के लिए कभी न कभी अफसानों की जानिब रुख ज़रूर किया है। ये अफसाना वो बयानिया तहरीर होती है जिसमें फ़न को मलहूज रखकर ज़िंदगी के ताल्लुक से किसी ऐसे वाक़े, तजुर्बे या एहसास और ख़्याल को किसी कहानी के पैराए में मुख्तसरन बयान कर दिया जाए, जिससे कारी पूरी एक सुई और ज़हनी लगाव के साथ उसे पढ़ सके और इब्तदाई तासीर अंजाम को पहुँच कर अपना एक मुकम्मल और भरपूर नक्श कारी के जहन पर कायम कर जाए। अगर हम इस बात को देखें कि तो ये देखते हैं कि दरअसल अफसाना ज़िंदगी के ताल्लुक से उस तमाम मुहर्रिकात वावामिल, गुनागो मशागिल, सानही नशीब व फराज और वो वाक़ियाती मंद जिसको अपने अंदर समोए हुए इस तरह अदबी पैकर में ढलता है कि ज़िंदगी के किसी एक पहलू को मुनक्किस करके कारी के जहन पर एक भरपूर तासीर छोड़ जाता है। अफसाने की जो रूह होती है सामीन, वो उसकी वहदत तासीर है। अफसाने की रिवायत की तरफ अगर हम देखें तो उर्दू अफसाने की जो इब्तदाई नकूश हैं वो हमारी दास्तानों में तलाश किए जा सकते हैं, और ये दास्तानें किस्सा दर किस्सा प्लॉट की हामिल हुआ करती थीं, और इनके मुख्तलिफ किस्से अपनी अपनी जगह इस कदर मुकम्मल हैं कि उन पर मुख्तसर अफसाने होने का गुमान होता है। अफसाने का मज़ीद जो वाहिद वाज़ नक़ूश है वो हमें 19वीं सदी के आखिरी दहाई में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फैज़ुल हसन, प्यारे लाल अशोक, अब्दुल हलीम शरर, शिव भरत लाल और ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों में नज़र आते हैं। लेकिन तारीखी एतबार से उर्दू अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के तुलुए सुबह से होता है, और पहला तबेज़ाद अफसाना मौलाना राशिदुल खैरी का नसीर और खुदैजा करार पाता है। ये अफसाना मुखज़िन लाहौर बाबत माह दिसंबर 1903 में शाया हुआ था। हालांकि ये अफसाना एक तवील ख़त की सूरत में लिखा गया है जिसमें बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई को चंद नसीहतें की हैं, और मरहूमा बहन के बच्चों की खराब और खस्ता हालत की जानिब उसकी तवज्जो मबजूल कराते हुए उनके परवरिश का माकूल बंदोबस्त करने की दरख्वास्त की है। इसके बाद प्रेमचंद और उर्दू अफसाने की तारीख में इतने अहम मकाम के मालिक हैं कि उनका नाम इलाहदा कर लेने पर ही उर्दू अफसाना निगारी की रिवायत से वो वाकफियत हासिल करना नामुमकिन है। हकीकत यह है कि उनके अफसानों को तारीख वार सामने रख कर बाकायदा उर्दू अफसाने की तारीख को तरतीब दिया जा सकता है। आइए सामीन, इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि हमने अपने इस तस्करे में दास्तान का जिक्र किया था। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो अगली पेशकश है उसमें दास्तान गोई की रिवायत कदीम तहाल कैसे सफ़र करती है। ये गुफ्तगू आपकी समातों के हवाले पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाएं।
1: सामाइन, मैं ज़री फातमा आप लोगों को सलाम पेश करती हूँ। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक अहम मौजू दास्तान गोई पर। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के सदर शोबा फ़ारसी डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम। गुफ्तगू का ये सिलसिला शुरू करते हैं अहमद फराज के इस खूबसूरत शेर से। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। डॉक्टर जमशेद आलम साहब, आपको आप बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में।
2: तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं आकाशवाणी का और हमारे सारे साथी का जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। ये जो गुफ्तगू हम दास्तान पे जो कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी एक कदीम ज़माने से चली आ रही है चीज़। दास्तान अमूमन कहते हैं फ़ारसी के एक लफ्ज़ से निकली है जिसके माने होते हैं कहानी। फ़ारसी के ही लफ्ज़ हैं। गोई गुफ्तन से आया है, गुफ्तन। तो गुफ्तन फारसी का एक मुजारा है जिससे हम लोग गोई बनाए हैं। तो दास्तान गोई यानी दास्तान को कहने वाली कोई चीज़। दास्तान हर दौर में बड़ी ही आम और मशहूर रही है। जब लिखने का रिवाज नहीं था तब लोग कह के ही अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे। अमूमन ये वस्ती एशिया, ईरान, खास करके तुर्की और आज़रबैजान में ज़्यादातर

0: इस्तेमाल होती है। तो आप कभी भी कहीं देखती होंगी, आजकल तो बहुत ही आम फैम भी हो चुका है ये सारी चीज़ें, कि लोग दास्तान गोई को पसंद कर रहे हैं। हमारे पुराने ज़माने में दादा नाना नानी होते थे जो दास्तान सुनाते थे, आज के वक्त में ये ख़त्म होता चला जा रहा है। दास्तान का सकाफती तारीख जो है वो बड़े ही मालामाल चीज़ों से भरा हुआ है। आप यूं कह लीजिए, पहले जो दास्तान गोई या दास्तान की शक्ल होती थी वो नज़म के तौर में होती थी,
1: मतलब इसकी
0: नस्र।
1: रवायत कहाँ से शुरू हुई
0: ईरान
1: मतलब?
0: से, अमूमन कहते हैं एशिया में ही ईरान से शुरू हुई, क्योंकि
1: अच्छा
0: मैंने
1: अच्छा
0: बताया कि ये लफ्ज़ जो है ये फारसी से ली गई है, गुफ्तन से,
1: जी,
0: गुफ्तन कहना।
1: कब से शुरू हुई है?
0: कहते हैं कि जब शाहनामा 329 हिजरी के वक्त में
1: हाँ,
0: जब फिरदौसी हुआ करता था,
1: अच्छा,
0: तब से ये रवायत चलती चली आ रही है। कहते हैं कि उनसे पहले भी नज्म की शक्ल में हुआ करती थी।
1: गोया अलिफ लैला वगैरह जिस तरह से जो
0: शाहनामा है, शाहनामे
1: शाहनामा,
0: फिरदौसी है,
1: हाँ
0: चाहे आप अगर रुदकी को देखती हैं, चाहे अलिफ लैला
1: अलिफ
0: देखती हैं
1: लैला,
0: अरबी अदब में, फारसी अदब में,
1: हाँ, रानी केतकी की कहानी वगैरह जो है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से ये काफी आम फहम रही। उर्दू अदब में भी इसका बड़ा ही नुमाइंदगी की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। 1649 के आसपास कहते हैं हिंदुस्तान में ये चीज दास्तान की शक्ल में लेना शुरू किया,
1: मतलब उसके बाद ये नसरी शक्ल में आने
0: नसरी
1: लगा।
0: शक्ल में आनी शुरू हुई। लिखते थे पहले
1: जी,
0: तो
1: पहले तो कहते थे,
0: शेर की
1: हाँ
0: शक्ल में कह देते
1: कहते
0: थे,
1: थे।
0: जैसे
1: जी
0: कि मान लीजिए कुछ कहना ही है किसी को। फारसी का
1: जी
0: ही एक बहुत मशहूर कलाम है, आपने सुना भी होगा, कि बसी रंज बुरदम दरिन सालेसी, अजम जिंद करदम बेदिन पारसी, नमीरम अजिन पस के मन जिंदे अम के तुख्मे सुखन रा पराकंदे अम। उस कहना यही चाहता है कि मैंने 30 साल मेहनत किया है इस शाहनामा को लिखने के लिए,
1: जी
0: और मैंने पूरी कोशिश और जी और जान लगा दिया इस पूरी दास्तान को
1: दास्तान
0: लिखने
1: को
0: के लिए,
1: लिखने में,
0: लेकिन शेरी शक्ल में है।
1: शेरी शक्ल में,
0: बाद
1: हाँ
0: में ईरान से जो ये चीज़ शुरू हुई, ईरान में 1906 के आसपास ये नसरी शक्ल में आई।
1: अच्छा, 1906 के आसपास आई, यानी उससे पहले जो चार दरवेश वगैरह जो थी,
0: सब
1: जिस,
0: अमूमन
1: हाँ,
0: उसी
1: खुसरो
0: शेरी शक्ल
1: वगैरह
0: में,
1: ने ये किया था, तो वो शेरी
0: बिल्कुल
1: शक्ल में
0: बिल्कुल
1: थी।
0: बिल्कुल। अब जैसे उमर खयाम को ही अगर आप पढ़ते हैं तो उनका भी वही है, रुबाई लिखते हैं वो शेर के अंदाज में लिखते हैं ना। वो कहते हैं क्या कि रूजी के गुजश्त हीच अज उ याद मकुन, फरदा के न आमदे अस्त फरियाद मकुन, बर न आमदे वो गुजश्त बुनियाद मकुन, हाली के खुशबाश उम्र बर्बाद मकुन। कहना वही चाहते हैं कि जो बीत गया है वो चीज़ आने वाला नहीं है, और हमारा जो हाल है वो माजी तो चला गया, हाल तो बहुत बेहतर है, इसको करो, मुस्तकबिल का तो पता नहीं है। कहना यही चाहते हैं, लेकिन शेरी अंदाज हुआ था,
1: शेरी
0: हुआ
1: अंदाज
0: करता
1: हुआ
0: था।
1: करता था।
0: शेरी अंदाज में कहने का एक ये भी ये खास बात थी कि ये चीज़ों को खूबसूरती से करता है ना।
1: हाँ, पेश करने का तरीका
0: क्लासिक
1: अच्छा लगता,
0: क्लासिक
1: थोड़ा
0: चीज़ों,
1: अच्छा
0: थोड़ा
1: लगता।
0: क्लासिक चीज़ें करता है
1: जी
0: ये, कि दास्तान जो है हिंदुस्तान में, दास्तान महाभारत और रामायण की शक्ल में
1: में आई
0: रजमिया
1: है।
0: है ये। क्या कह रहा है? विष्णु शर्मा की किताब अगर उठाती हैं आप, जिसको बाद में ईरान ले जा करके उसको ट्रांसलेट की गई कलीला व दमना की शक्ल में,
1: अच्छा
0: जिसको
1: अच्छा
0: कर्तक व दमना ही बोलते हैं ना,
1: अच्छा अच्छा
0: पंचतंत्रा बोलते हैं हम उसको, क्या है?
1: दास्तान के
0: दास्तान ही
1: लिए
0: तो
1: तय
0: है।
1: किया
0: और वो क्या
1: था,
0: है? नसीहत है, एनेक्डोट्स है, हिकायत है,
1: उस पस मंजर में बात
0: बिल्कुल।
1: होती है।
0: जैसे अरब दुनिया में अलिफ लैला बहुत मशहूर
1: हाँ,
0: है ना, अलिफ लैला वो क्या है? दास्तान ही है, कहने की है।
1: ये भी अगर देखा जाए तो ये खुद एक अपने आप में
0: सारी की
1: एक
0: सारी
1: दास्तान है।
0: दास्तान की ही शक्ल में है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, सब
0: सब
1: दास्तान कह रहे,
0: सब
1: बिल्कुल,
0: कहानी ही बयान कर रहे हैं, शक्ल अलग अलग है
1: शक्ल
0: और ये
1: अलग
0: सारी
1: अलग।
0: चीजें अलग अलग हो रही हैं। दास्तान को अगर हम कह रहे हैं, गुफ्तन कर रहे हैं, गोई कह रहे हैं, तो दास्तान गोई हो रहा है। तो ये रवायत बहुत पुरानी है। पुराने यानी कदीम दौर में आप देखेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे या दरख्त के नीचे बैठ करके लोग कहानियां सुनाते थे ना, वो हुआ करती थी, वो हुआ करता था, वो दौर था।
1: अदब के इसमें कहा जाए तो अदब में ये दास्तान गोई की अहमियत तो,
0: अदब, हम आपको बताते हैं, ये जो इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है कि लिटरेचर इज नथिंग बट अ मिरर ऑफ
1: मिरर
0: सोसाइटी
1: ऑफ
0: ना,
1: सोसाइटी, बिल्कुल, हाँ, समाज,
0: जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, आईना है वो,
1: हाँ,
0: माशरा का, वो दिखाता है।
1: तो अदब में इसकी काफी अहमियत है, लेकिन दास्तान में और कहानी में कुछ तो फर्क होगा।
0: दास्तान क्या होता है ना, वो दास्तान का जो किरदार है वो
1: हाँ,
0: हमारा बाजार से ही उठाया जा रहा है। तो दास्तान तो आप देख रहे हैं क्या कि पहले दास्तान लिखना बड़ा ही मुश्किल काम हुआ करता था, अब आप भी दास्तान लिख
1: लेकिन
0: सकते हैं।
1: दास्तान, पहले दास्तान कहना आसान होता था,
0: बिल्कुल, दास्तान कहना इसीलिए आसान होता था क्योंकि लिखने की रवायत नहीं थी,
1: नहीं थी,
0: तो दास्तान कहते थे हम लोग।
1: हाँ,
0: तो
1: दास्तान की
0: दास्तान
1: तरह,
0: गोई की जो रवायत है वो बहुत कदीम जमाने से चलती चली आ रही है।
1: हाँ,
0: तो दास्तान गोई और दास्तान नविश्तनी
1: हाँ,
0: दो अलग अलग चीजें हैं। दास्तान गोई की जब रिवायत खत्म होने लगी तो
1: तो
0: जब
1: नविश्तनी,
0: नविश्तनी नविश्तन करने का वो सिलसिला फिर

0: शुरू हो गया।
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: हाँ शुरू
0: बिल्कुल।
1: हो गया। तो कुछ दास्तान गो जो कदीम दौर के हैं और कुछ अभी के, जिसने अपने नाम
0: जी
1: लिया, कुछ इन पे भी जैसे रोशनी डाली, जैसे मुल्ला वजी वगैरह थे, इन लोगों ने किस तरह की दास्तान गोई की और किस तरह आज का वो ये है
0: देखिए,
1: ट्रेंड है?
0: हम बेशक इनको कबूल करते हैं और आगे तक कबूल करेंगे, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ना, इन्होंने ही दिया है। तो इनकी जो दास्तान लिखने की और कहने की जो रवायत रही है, वो
1: हाँ,
0: क्लासिक
1: जाहिर है
0: है,
1: कि उन्होंने
0: क्लासिक
1: शुरुआतें
0: है।
1: की है।
0: लेकिन मॉडर्न तरीके में हमने उसी चीज़ को अपना बेस और इख्तियार माना है, और उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं। तो दास्तान आ गया
1: दास्तान
0: ना,
1: इस
0: वो
1: तरह
0: सारी
1: से,
0: चीज़ें में।
1: बल्कि उर्दू अदब में तो कई दास्तानें ऐसी हैं जैसे सबरंग वगैरह हैं या
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: सारी
0: बिल्कुल
1: चीजें शहरी अंदाज में थे
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: नज़म के तौर पे थे और उसको बहुत अच्छे से पढ़े जाते थे और हम लोगों को ये कहा जाता था कि ये नस्र के अंदाज में लिखा जाए।
0: बिल्कुल
1: तो खैर,
0: बिल्कुल
1: ये तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन आज के दौर में इसे कितना अपनाया जा रहा है? मुझे ऐसा महसूस होता है कि दास्तान गोई पहले से अब में काफी फर्क आया है। अब लोग दास्तान गोई की तरफ कम तवज्जो देते हैं।
0: बात तो सही है, क्योंकि अब खास करके प्रिंट हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में दास्तान अब कोई भी लिख सकता है। हम जिस दानिशगाह में पढ़ाते हैं, वहाँ हमने इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है
1: अच्छा,
0: कि आपको एक असाइनमेंट दी जाती है दास्तान पे। दास्तान तो बहुत अहम हिस्सा है पढ़ाने के लिए भी, 1000 लफ्ज़ में, अल्फाज में लिख करके लाएँ।
1: बहुत अच्छे,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा लगा जमशेद साहब, आपसे बातचीत करके दास्तान गोई को भी समझा हम लोगों ने और दास्तान गोई की रिवायत को आगे बढ़ाने का जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, ये सब को भी हम चाहेंगे कि हम
0: बिल्कुल
1: लोग भी
0: बिल्कुल
1: अपनी जिम्मेदारी को निभा सके और
0: बिल्कुल
1: हम लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि भाई दास्तान गोई का सिलसिला जारी रखें
0: जारी रखें। बिल्कुल
1: और मुताला करें, आप जैसे आपने
0: मुताला
1: कहा
0: करें,
1: कि बस
0: मुताला
1: गहराई से मुताला
0: मुताला
1: करें।
0: करें,
1: बहुत
0: मुताला
1: बहुत
0: बहुत अहम
1: शुक्रिया।
0: होता है।
1: और लेकिन आखिर में मैं चाहूंगी कि ये मुअम्मा है समझने
0: एक
1: का,
0: मुअम्मा
1: फिर
0: है
1: से आप
0: समझने
1: एक
0: का न
1: इस शेर को
0: समझाने,
1: बोल दें
0: एक
1: ताकि इस
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे सामने
1: प्रोग्राम को
0: इंसान,
1: इख्तिताम पज़ीर कर सकें।
0: एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का
1: दीवाने
0: है।
1: का बहुत शुक्रिया, बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया।
1: तो ज़रीन फातिमा को भी दीजिए इजाज़त।
2: सामीन, ये गुफ्तगू आप समाप्त फरमा रहे थे बउनवान दास्तान गोई की रिवायत कदीम ता हाल। इस मौजू पर मोहम्मद जमशेद आलम से ज़रीन फातिमा की गुफ्तगू थी। लीजिए अगली पेशकश, कलामे शायर के तहत शकील हाशमी से उनका कलाम मुलाहिजा करें।
3: गज़ल के चंद अशआर मुलाहिज़ा फरमा लें। मतला अर्ज है, अगर ये लोग अब के हौसला अपना जमा कर लें, अगर ये लोग अब के हौसला अपना जमा कर लें, तो फिर तारीक राहों को ये अपनी कहकशा कर लें। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, सजा कर दामन हस्ती में कुछ गलियाँ मुसर्रत की, सजा कर दामन हस्ती में कुछ गलियाँ मुसर्रत की, फसुरदा साआतों को आइए अब शादमा कर लें। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, हर एक जानिब बिखर जाएगी खुशबू देख लेना तुम, हर एक जानिब बिखर जाएगी खुशबू देख लेना तुम, मोहब्बत से ठहरने का इरादा हम जहाँ कर लें। और न होगी गर्क फिर कश्ती कभी बहरे तलातुम में, न होगी गर्क फिर कश्ती कभी बहरे तलातुम में, भंवर से खेलने का हौसला गर बाद बाँ कर लें। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, ज़मीं पर ही उतरते हैं वो अपने रिस्क की खातिर, ज़मीं पर ही उतरते हैं वो अपने रिस्क की खातिर, बुलंदी पर परिंदे लाख अपना आशियां कर लें। और ये शेर देख लें, नहीं हो तुम तो हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं हो तुम तो हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा है, चले आओ कि अब हम प्यार का रोशन जहां कर लें। मक्ता मुलाहिज़ा फरमा लें, शकील अब फ़िक्र के महके हुए ताज़ा गुलाबों से, शकील अब फ़िक्र के महके हुए ताज़ा गुलाबों से, सजा कर वक्त के सहरा को आओ गुलसिता कर लें। आइए गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लें। मतला पेश है, फूल खुशबू रुत सुहानी जाएगी, फूल खुशबू रुत सुहानी जाएगी, जिंदगी की हर निशानी जाएगी। ये शेर देखें, छीन लेगा वक्त आँखों का शबाब, छीन लेगा वक्त आँखों का शबाब और लबों से खुश बयानी जाएगी। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, कब करोगे एक दूजे पर यकीन, कब करोगे एक दूजे पर यकीन,

दिलों से बदगुमानी जाएगी। और ये शेर देख लें कि अब न रखा जाएगा अपना लिहाज, अब न रखा जाएगा अपना लिहाज और न कोई बात मानी जाएगी। और जिस कदर भी है गनीमत जानिए, जिस कदर भी है गनीमत जानिए, अब तो ये रुत भी सुहानी जाएगी। ये शेर मुलाजा फरमा लें कि गर्क हो जाएगा कश्ती का वजूद, गर्क हो जाएगा कश्ती का वजूद जब अदाए बादबानी जाएगी। और मक्ता पेश है, फिक्र फन बेदार होंगे जब शकील, फिक्र फन बेदार होंगे जब शकील, तीरगी की हुक्मरानी जाएगी। और आइए गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लें। मतला अर्ज़ है कि तेरे करम से दिल मेरा जब आशना हुआ, तेरे करम से दिल मेरा जब आशना हुआ, हर लम्हा ज़िंदगी का मेरी खुशनुमा हुआ। और ये शेर देख लें कि जिस दिन तुम्हारा लुत्फ़ो करम हम पे खुल गया, जिस दिन तुम्हारा लुत्फ़ो करम हम पे खुल गया, उस दिन से दूर गम का हर एक सिलसिला हुआ। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, हर शख्स बेकरारी के आलम में है अभी, हर शख्स बेकरारी के आलम में है अभी, हर समत जैसे है कोई महशर बपा हुआ। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, हालात के खुले हुए तेवर को देखकर, हालात के खुले हुए तेवर को देखकर मेरे ख्याल व फिक्र में एक जलजला हुआ। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, उभरेंगे कब निगाहों में उम्मीद के नक़ूश, उभरेंगे कब निगाहों में उम्मीद के नक़ूश, मायूसियाँ हैं हर तरफ गुम रास्ता हुआ। और गज़ल का आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, मुझसे मेरी परछाई भी करने लगी गुरेज, मुझसे मेरी परछाई भी करने लगी गुरेज जब ज़िंदगी में तीरगी का सामना हुआ। और मक्ता पेश है, रिश्ते तमाम गुम हुए दुनिया की भीड़ में, रिश्ते तमाम गुम हुए दुनिया की भीड़ में, तन्हा शकील रह गया जाने दो क्या हुआ। और आइए एक गज़ल के चंद अशार और मुलाहिज़ा फरमा लें। मतला पेश है कि फूलों की वादियाँ हों या रास्ते हों खार के, फूलों की वादियाँ हों या रास्ते हों खार के, रुकिएगा कभी राह में हिम्मत ना हार के। और ये शेर अब तक खिजा की कैद से बाहर ना आ सका, अब तक खिजा की कैद से बाहर ना आ सका, मुद्दत से देखता था जो सपने बहार के। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, लम्हे सभी हयात के मेरे खिलाफ़ हैं, लम्हे सभी हयात के मेरे खिलाफ़ हैं, पर हौसले जवां हैं अभी एतबार के। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, चलिए अब ऐसे रास्ते की जुस्तजू करें, चलिए अब ऐसे रास्ते की जुस्तजू करें जिस राह पे खिलते हों फूल इफ्तिखार के। और ये शेर गज़ल का आखिरी शेर, हर समत ख्वाहिशों का मचलता हुजूम है, हर समत ख्वाहिशों का मचलता हुजूम है, लम्हे बिखर के रह गए कौलो करार के। और मक्ता हाजिर है, बरहम शकील क्यों रहे उनके वजूद से, बरहम शकील क्यों रहे उनके वजूद से, ज़र्रे हैं वो भी गुलशने नापायदार के। और लीजिए एक गज़ल और हाजिर है, मुलाहिज़ा फरमा लें, कभी जो खुद को समझता था आसमां जैसा। मतला पेश है, कभी जो खुद को समझता था आसमां जैसा, बिखर के रह गया है आज वो धुआं जैसा। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, न छू सकेगी अब हालात की तपिश मुझको, न छू सकेगी अब हालात की तपिश मुझको, तेरा वजूद सरापा है साहिबा जैसा। और ये शेर देख लें, जो मेरे लब पे मचलता था एक हरफे दुआ, जो मेरे लब पे मचलता था एक हरफे दुआ, चमक रहा है फलक पे वो कहकशां जैसा। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, हर एक साते इमरोज़ है गिरा मुझको, हर एक साते इमरोज़ है गिरा मुझको, हर एक लम्हा गुजरता है इम्तिहान जैसा। और ये शेर, तुम्हारी याद के वीरान दश्त सहरा में, तुम्हारी याद के वीरान दश्त सहरा में, हर एक नक्शे कफे पा है रायगां जैसा। और गज़ल का आखिरी शेर, सिमट के रह गया नफ़रत के तुंद शोलों में, सिमट के रह गया नफ़रत के तुंद शोलों में, कि जिसका शोर था दरियाए बेकरां जैसा। और मक्ता पेश है, मुलाहिज़ा फरमा लें, फरेब सबकी निगाहों से है शकील अयां, फरेब सबकी निगाहों से है शकील अया, मुझे लगा ही नहीं।

0: कोई मेहरबा जैसा, कभी जो खुद को समझता था आसमां जैसा, बिखर के रह गया है आज वो धुआं जैसा।
1: सामीन, ये थे शकील हाशमी, जिनसे आप उनके कलाम मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। और फिर ये हमारी अगली पेशकश की जानिब हम लीजिए मुतवज्जे होते हैं। बस मौसिकी के तहत ये ग़ज़ल आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं।

सामीन मिर्ज़ा गालिब का कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में आप समाप्त कर रहे थे, और इसी के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन एक
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दीवाना से। कलाकार हैं कुमार सानू, गीत समीर की है और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दस्तक फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे उदित नारायण, गीत जावेद अख्तर का था और संगीत था राजेश रोशन का। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म जिगर से, अभिजीत और साधना सरगम की आवाजों में, संगीत है आनंद मिलिंद का।

आज मशहूर गायक गीतकार गुलजार साहब का जन्मदिन है, जयंती है। उनको याद करते हुए हम सुनवाते हैं ये गीत फिल्म खूबसूरत से। गायक कलाकार हैं अभिजीत और निर्जा पंडित। इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

मशहूर गीतकार गुलजार साहब का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम आपको अभी सुनवा रहे थे फिल्म मौसम से ये गीत। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह, संगीतकार मदन मोहन। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें। मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
1: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
0: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।

साजन फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गीत। गायक कलाकार थे कुमार सानू और अलका याग्निक। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन और वाचन है विजेता सिन्हा का। प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

0: अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बजीका के साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। हम हमेशा के तरह आज भी अपन समय पर उपस्थित हती। देखो, जीवन जिए के लेल, जीवन में खुशी पावे के लेल जीवन रक्षा बहुत जरूरी है। जीवन रक्षा के लेल अनचाहा दुर्घटना से बचना जरूरी है आ अनचाहा दुर्घटना से बचे के लेल यातायात के नियम के पालन करना बहुत जरूरी है। काहे कि यातायात के नियम हमारे जीवन के रक्षा करे के लेल, सड़क दुर्घटना के टाले के लेल आ सुगम यातायात व्यवस्था बनावे के लेल सबसे महत्वपूर्ण साधन है। एकर पालन करे से न सिर्फ हमर सबके अपन जीवन सुरक्षित रहैया, बल्कि सड़क पर चले वाला जितना लोग हतन सब सुरक्षित रहत हतन। देखो, वैसे तो समय के कोनो नहीं जानैया, कभी भी कुछ भी हो सकैया, लेकिन जानबूझ के दुर्घटना के आमंत्रण नहीं देवे के चाही। हमर कहे के मतलब है कि जब सड़क दुर्घटना होइया तो ओकरा पीछे कहीं न कहीं हम खुद भी जिम्मेदार रहत हती। कोनो कोनो लोग के ये आदत होइया कि वो मोटरसाइकिल चलावे समय अपन कान आ कंधा के बीच मोबाइल दबा के बात करत हतन, जैसे हुनकर ध्यान बात करे पर ज्यादा आ सड़क पर कम रहैया, जकरा कारण दुर्घटना के संभावना बनैया। तो सड़क पर जब भी मोटरसाइकिल चलाई तो सिर पर हेलमेट होय के चाही आ मोबाइल से बात नहीं करे के चाही। काहे कि कहल जाइया, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो सड़क पर वाहन चलावे समय हमेशा सतर्क रही। जब भी पैदल चली आ संगे बच्चा रहे तो बाएं से चले के कोशिश करे के चाही। यातायात के नियम समाज में सुरक्षा आ सुव्यवस्थित आगमन के लिए जरूरी है। सड़क पर चलते समय यातायात संकेत के पालन, गति सीमा के ध्यान, हेलमेट आ सीट बेल्ट के प्रयोग करे के चाही। एना करे से सड़क दुर्घटना के संभावना कम बनैया। ट्रैफिक के तीन बत्ती लाल, पीला, हरा हमरा सबके रुकना, सावधान होना आ चलना सिखावैया। अगर तनका ध्यान देल जाए, तनका सावधान रहल जाए तो सड़क दुर्घटना के रोकल जा सकैया। जेना कि गाड़ी चलावे समय कान में हेडफोन नहीं लगावे के चाही, केकरो से बात नहीं करे के चाही, गीत बजे तो ओहि पर ध्यान नहीं देवे के चाही, कोनो चीज के पढ़ित नहीं चले के चाही। एना में ध्यान भटकैया आ दुर्घटना के संभावना बढ़ैया। तो जब भी गाड़ी चलाई तो धीरे चलाई, केकरो संगे कंपटीशन नहीं करी कि हमरा आगे निकले के है। नशा में रहला पर गाड़ी नहीं चलावे के चाही। इस तरह के नियम के पालन अगर हम सब करे हती तो हम सब एगो जिम्मेदार नागरिक बन सके हती। यातायात के नियम तोड़े से न केवल स्वयं के जान जोखिम में पड़ैया, बल्कि दूसरों के जीवन खतरा में पड़ सकैया। अइला हमरा सबके हमेशा यातायात के नियम के पालन करे के चाही। तनका सतर्क रह के सुरक्षित यात्रा करके आदर्श नागरिक बने के संकल्प लेवे के चाही, तभी सड़क दुर्घटना कम हो सकैया। तो यातायात के नियम के पालन करे के लेल स्वयं भी जागरूक रही आ दूसरों के भी अइला जागरूक करी। यातायात के नियम के बारे में एगो आदमी की कहत हतन, आओ सुनत हती।
1: यातायात नियम के पालन करे के चाहिए। का है, आए दिन दुर्घटना होते रहे कि तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गए। गाड़ी जब चलबे है तो ओकरा ई ध्यान रहे अपन काम पर कि अब जल्दी से जेबे, जल्दी से काम करबे, से नहीं काम जे होय के रहते से तो होबे करते। तो गाड़ी चलते वक्त फोन आ गए, मोबाइल आ गए, बजे लगल, तो गाड़ी चलते चलते में मोबाइल उठा ले ली, मोबाइल रिसीव करके बात करे लगली, वही चक्कर में की हुए कि एक्सीडेंट कर जाए। और कतनो कॉल आ गए तो गाड़ी के साइड में रोक करके दू लाइन बतिया ले ली आ फिर ओके बाद गाड़ी ड्राइव कर ली। ऐसे की होले, अपना भी सुरक्षित रहली आ सामने वाला भी सुरक्षित रहे। और गाड़ी चलबे वक्त ई हमेशा ध्यान रखे चाहिए कि दाया से चलू कि बाया से चलू, जे ओकर साइड पड़े वही साइड से चले के चाहिए। आ कभी कभी की हुए कि जाम के कारण बाया के जगह दाया से भागे लगे, एक कारण की हुए कि जे दाया वाला रहे एक्सीडेंट हो जाए। जिंदगी बड़ा अनमोल हुए है, आदमी ध्यान नहीं दे कि होते नहीं होते, हड़बड़ में तो गाड़ी चला ले वही जाके एक्सीडेंट कर जाए। हमेशा गाड़ी नियम से चलबे के चाहिए, दाया बाया। अब रात के समय है तो बाया में मोड़े के है तो जे इंडिकेटर हो, इंडिकेटर दे के चलबे के चाहिए। दिन है तो

0: नहीं उतना पता चले तो अपना हाथ दे करके तब गाड़ी के पीछे देख ले हल्का स्लो करके, कोई गाड़ी तो स्पीड में नहीं आ रहा है। आजकल देखल गया है कि अक्सर लड़का है जो गाड़ी में गाड़ी रेस लगा भी है कि हम आगे तो हम आगे, आई आगे के चक्कर में की हुए कि स्पीड में गाड़ी रहे नियंत्रण खो दे आ जाकर आगे एक्सीडेंट कर जाए है। स्पीड गाड़ी चलबे लेल हाईवे बनल है, लेकिन ओहि में भी एक नियम है कि कितना स्पीड में गाड़ी चलबे के चाहिए। अब दू चक्का के जे पावर है वही हिसाब से ना, अब आगे जा रहा है स्कॉर्पियो बोलेरो तो ओकर स्पीड कुछ और है और मोटरसाइकिल कुछ और है, लेकिन की करे ओवरटेक में ओकर आदमी कंपटीशन करे लगे ओकरा से आगे निकले लगे तो चार चक्का रहे उ निकल जाए आई दू चक्का जे रहे मोटरसाइकिल वो एक्सीडेंट कर जाए है। आर हाईवे जैसन लोग शहरों में गाड़ी चलबे लगे है जे कि शहर में तो बिल्कुल नहीं चलाबे के चाहिए क्योंकि टाउन है, टाउन में एनी टाइम गाड़ी घोड़ा रिक्शा एनी टाइम चलते रहे क्योंकि बिजी जगह भले। अब हाईवे भले सिर्फ ओहि पर गाड़िए चले है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए जगह के हिसाब से गाड़ी चलबे के चाहिए कि कौन जगह पर कितना स्पीड गाड़ी हम चलाओ। ये बात तो खास तौर पर ध्यान रखे के चाहिए कि गाड़ी चलाबे वक्त मोबाइल रिसीव नहीं करे के चाहिए।
1: अखनी अपने सब यातायात के नियम के पालन करे के संबंध में एगो आदमी के की विचार रहे उ सुनित रही। तो आओ कार्यक्रम में अब आगे बढ़े थती आ अपने सबके सुनवावे थती मणिमाला कुमारी के ई लोक गीत।

तो अखनी अपने सब सुनत रही मणिमाला कुमारी के ई लोकगीत। आओ अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हती आ बात अपन धरोहर में आज हम बात करत हती भारत के विश्व धरोहर आगरा के ताजमहल के विषय में, जेकरा प्रेम के प्रतीक कहल जाइए। काहे कि ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपन बेगम मुमताज के याद में बनायल गेल रहे। ताजमहल के प्रेम के प्रतीक ऐला कहल जाइए, काहे कि शाहजहां अपन पत्नी मुमताज से बहुत प्रेम करित रहतन। लेकिन 1631 ईस्वी में अपन बच्चा के जन्म देवित समय मुमताज के निधन हो गेल। अपन बेगम के मृत्यु से शाहजहां बहुत दुखी भेलन आ हुनकर याद में

0: एगो ऐसन भव्य आ अद्वितीय मकबरा बनावे के संकल्प लेलन जे दुनिया में हुनकर प्रेम के निशानी बन सके। ई प्रेम के प्रतीक ताजमहल के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के तट पर बनायल गेल। ई इमारत के पूरा करे में करीब 22 साल लगल रहे। एकरा बनवावे के लेल देश विदेश से 20,000 से ज्यादा कारीगर बुलायल गेल। शाहजहां एकरा खूबसूरत आ यादगार बनावे के लेल हर संभव उपाय कैलन, जेना कि ई स्मारक पूरा तरह से मकराना के सफेद संगमरमर से बनल है। एकर खासियत ई है कि ई दिन के अलग अलग समय पर अपन रंग बदलैत प्रतीत होइया। कहे के मतलब है, भोर में गुलाबी त दोपहर में चमकीला सफेद आ चांदनी रात में सुनहरा नजर आबैया। यहाँ के दीवार पर कैल गेल कीमती रत्न आ नक्काशी के बारीक कारीगरी दुनिया भर के लोग के अपना तरफ आकर्षित करैया आ देखते देखते ई एगो पर्यटक स्थल बन गेल। आज के समय में दूर दूर से लोग एकरा देखे के लेल आबे थतन आ मुमताज के लेल शाहजहां के प्रेम के याद कल जाइया। देखो, ताजमहल के मुख्य मकबरा, मीनार आ उद्यान पूरा तरह से गणितीय समरूपता के आधार पर बनायल गेल है। खास के प्रेम के ई प्रतीक के अपन आँख से देखे के लेल दुनिया भर से प्रेमी जोड़ा आ पर्यटक यहाँ खींचल आबित हतन। 17वीं आ 18वीं शताब्दी में भारत आयल यूरोपीय यात्री आ व्यापारी सब अपन डायरी में एक जम के गुणगान कैले हतन। आ जब 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरुआती में फोटोग्राफर द्वारा एकर तस्वीर पूरे दुनिया में फैलायल गेल, जेकरा कारण पश्चिम के लोग सब में भी एकरा देखे के लेल उत्सुकता बढ़ल आ ई एगो पर्यटक स्थल बन गेल। साल 1983 में यूनेस्को द्वारा एकरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कैल गेल, जैसे एकर सुरक्षा आ वैश्विक लोकप्रियता बढ़ गेल। साल 2007 में एगो वैश्विक सर्वेक्षण के बाद से यहाँ हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक आबित हतन आ आगरा के ताजमहल के खूबसूरती के अपन आँख में समेट के जायत हतन। तब बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ित हती आ अपने के सुनवावे थती रेणु सिन्हा के खिस्सा, शीर्षक है प्रतीक्षा।
1: हमर खिस्सा के शीर्षक है प्रतीक्षा। बीए के छात्रा सबके पढ़ा के हम कक्षा से निकल के कार्यालय के तरफ जात रही तो दू गो छात्रा आपस में बात करत जात रहे। एक के नाम कविता और दोसर लड़की के नाम मेघा रहे। कविता मेघा से कहित रहे, मेघा हमर बियाह तो हो गेल और एगो लड़का भी हो गेल, लेकिन हमर पति जे अमेरिका गेलन नौकरी करे से फेर लौट के अभी तक ना अलन हँ। 5 साल हो गेल गेला, बियाह के 6 महीना के बाद ही उ चल गेलन नौकरी करे, लेकिन आज तक कोई खोज खबर न हमरा लेलन आ न बच्चा के। जे बच्चा हमरा गर्भ में रहे कभी ई भी न पूछलन कि कौन बच्चा भेल है, लड़का की लड़की। मेघा पूछलक कविता से, आखिर उ तोहरा साथे ऐसन काहे व्यवहार कैलन। कविता कहलक, ई बात तो हमरो समझ में ना आ रहल है कि उ काहे ऐसन कैलन, लेकिन एक बात हमू कहित हती मेघा तोहरा से कि हुनकर घर हमरा घर से थोड़े ही दूर पर है, कभी तो वो अपना घर पर अहन तो जरूर हम भेंट करब। मेघा, हम बूढ़ी भी हो जाए तब भी हम हुनकर रास्ता देखब, हम हुनकर प्रतीक्षा जरूर करब। कविता के बात सुन के हम बूढ़ी भी हो जाए तैयो हम हुनकर रास्ता देखब, हुनकर प्रतीक्षा हम जरूर करब, हमर रोआ सिहर गेल। मन में यह सोचे लगली कि इतना सुंदर लड़की जे लागत है कि भगवान एकरा के अपन हाथ से छुट्टी के समय में बनैले होतन। इतना कम उम्र और इतना बड़ा दृढ़ संकल्प, हमर इच्छा हो गेल कि हम कविता के बुला के ओकरा बारे में पूछत हती। गीत गजल भी उ लड़की बहुत सुंदर गावे, लेकिन ओकरा गीत गजल में भी एक दर्द छुपल रहे, हमर मन न मानलक। कविता के हम कार्यालय में ही बोलैली। संयोग से कार्यालय में हमरा साथे 2-3 महिला प्रोफेसर ही रहथिन, ए लेल ओकरा से बात करे के अच्छा अवसर भी रहे। कविता खड़ा न रह, बैठ जा कुर्सी पर। कविता, तोहर बात हम सुनली ह मेघा से, जे तू कहित रहलू ह कि हम बूढ़ी भी हो जाए तैयो हम हुनकर रास्ता देखब, हुनकर प्रतीक्षा हम जरूर करब। तोहर बात सुन के हमरा बहुत दुख भेल ह। आखिर कौन ऐसन बात भेल कि तोहर पति

ही तोहरा ई उम्र में एगो बच्चा के साथ तोहरा के छोड़ के अमेरिका चल गेलन। कविता कुछ सोच में पड़ गेल। हम ओकरा सोचैत देखली तो पूछली, की बात है कविता, कौन सोच में पड़ गेलू? कविता सोच से निकल के कहे लागल, 5 साल पहले के बात है, जब हम 9वीं पास करके 10वीं में गेल रही, हमरा गांव के जमींदार के लड़का बादल चाहित रहे हमरा से ब्याह करे के। उ इतना मनचला लड़का रहे कि स्कूल आते जाते रास्ता में लड़की सबके साथे छिड़कानी करे। हमर बाबूजी मिडिल स्कूल के एक साधारण शिक्षक, अपन परिवार के भरण पोषण और हमारा भाई बहन के पढ़ाई लिखाई तो उ कैसहू करत रहथिन, तो उ जमींदार के लड़का से कैसे हमर ब्याह करती हथिन। बादल के उम्र भी हमरा से 15 साल बेसी रहे। भले ही बादल इंजीनियरिंग के पढ़ाई पढ़ित रहथिन, लेकिन हुनकर चाल चलन आ बेसी उम्र के कारण हमर बाबूजी न तैयार भेलथिन ब्याह करे के। बादल 2 साल में इंजीनियरिंग पास करके अमेरिका चल गेलन नौकरी करे, लेकिन हम 10वीं के परीक्षा देत रही कि उ अमेरिका से आके हमरा बाबूजी से फिर हमर ब्याह हुनका से करे के कहलन। बाबूजी ब्याह करे के हुनका से फिर न तैयार भेलथिन। तो एक दिन जमींदार साहब अपने से आके हमरा घर पर बाबूजी से कहलथिन कि मास्टर साहब, की परेशानी है अपने के हमरा लड़का से कविता के ब्याह करे में? बाबूजी कहलथिन, जमींदार साहब, इस ब्याह बेमेल ब्याह होत, हमर कविता से अपने के लड़का 15 साल बड़ हतन, तो हम कैसे अपन बेटी के ब्याह बादल से कर दूँ? हम ओकर पिता हती ना, हम न ओकर भला बुरा सोचबै तो के सोचते? लेकिन जमींदार साहेब हमर बाबूजी के एक बात सुनेला न तैयार भेलथिन और कहलथिन कि मास्टर साहेब, अगर कविता के ब्याह अपने खुशी से हमरा लड़का से न करब तो हम जबरदस्ती अपने के आंगन में ही कविता से हम अपन लड़का के ब्याह करके ले जाएब। इतना कह के जमींदार साहेब चल गेलन, लेकिन 8-10 दिन के बाद ही अपन लड़का के ले लेलन। जमींदार तो रहबे करथिन, गांव के भी 10-15 आदमी हुनका साथ में रहे, जबरदस्ती हमरा से अपन लड़का के ब्याह करके विदा करा के ले गेलन। हमर माई बाबूजी मजबूर हो गेल ब्याह रोके से। हमर ब्याह हो गेल, हम ससुराल चल अयली। 6 महीना तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहल, इतने दिन में हम गर्भवती भी हो गेली। लेकिन बादल के जब ई बात के पता चल गेल कि 1 महीना के बच्चा हमरा गर्भ में है, तो अचानक एक दिन वो अमेरिका जाए के तैयार हो गेलन और अमेरिका चल गेलन। ओकरा बाद से बहुत दिन तक कोई खोज खबर न लेलन। हम नैहर माई बाबूजी के पास चल अयली। समय पूरा भेल तो हमरा लड़का भेल। कुछ दिन के बाद कोई कोई के मुँह से सुनली कि वो कहलन है कि कविता से ओकर बाबूजी जे तैयार न भेलथिन ब्याह करे के, यही लेल हम जबरदस्ती ब्याह करके बदला ले लेली है, अब हम उ लड़की के कहियो न पूछब। हम सब कविता के बात सुन के बहुत दुखी भेली। कविता फिर अपन बीतल दिन के बात कहे लागल कि कैसे हम बच्चा के रात में सुता के पढ़ाई लिखाई करत रही। बच्चा जब रोए लागे तो माई भी हमार कभी कभी खिसियाए लागे कि छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, बच्चा के देख। लेकिन हमहू सोच लेली है दीदी कि जैसे होत दुख काटब त काटब, लेकिन पढ़ लिख के आ कुछ बन के देखा देव हुनका के हम। वाह कविता, बहुत अच्छा सोच है तोहर। आज के समय में महिला भी पुरुष से कमजोर न है, तोहर विचार बहुत अच्छा है, भगवान तोहरा सफलता जरूर देथुन। इतना कह के हमहू सब कविता के कहली कि जा, तोहर विषय के कक्षा शुरू हो गेल है, पढ़ाई लिखाई जाके कर। हम सब जितना महिला प्रोफेसर सब रहे, सब के सब इतना सुंदर लड़की के दुख भरल बात सुन के दुखी हो गेली। समय बीतत गेल। कविता हमरा महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी से ही बीए पास करके चल गेलिन। 4-5 साल के बाद एक दिन हम महाविद्यालय जात रही ऑटो रिक्शा से, तो कविता भी वह ऑटो में बैठलिन। हमरा से पूछलक, दीदी हमरा के पहचान रही है? हमर नज़र जब ओकरा चेहरा पर पड़ल, अरे कविता है तू, भला तोहरा के कैसे न पहचानब, कह अपन हाल समाचार। ठीक है दीदी, हम पूछली कि आजकल की सब करत हत। कविता कहे लागल, हम बीए पास करे के बाद बीएड कैली और हमरा हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्ति भी हो गेल है, अब हम बहुत खुश हती। दीदी हुनका हम ये बात बता देली कि हम भी कोई कमजोर महिला न हती, हमर संकल्प रहे कि हम हुनका से कुछ कमजोर न हती आ कुछ बन के हुनका हम देखा दे। अच्छा ये बता,

0: कि तोहर पतिदेव आयलन अमेरिका से कि ना? हाँ आयलन की, एक साल पहले वो अपना घर पर आयलन। जैसे ही हमरा पता चलल वैसे ही हम बच्चा के साथे हुनका घर पर जाके भेंट कैली, हुनका के देखा देली कि ई बच्चा अपना ही के है, और हम अपन पढ़ाई लिखाई नौकरी के बारे में सब बात बता देली। सुन के बहुत खुश भेलन। लेकिन दीदी एगो प्रस्ताव ऐसन रखलन जे हम न मानली। उ कहलन कि तू नौकरी छोड़ दा और चलो हमरा साथे अमेरिका। हम साफ इनकार कर देली आ कहली कि हम बहुत संघर्ष करके ही नौकरी हासिल कैली है, अब हम सब कुछ छोड़ के विदेश चल जाओ ई हमरा से न होत। हम अपन देश समाज परिवार नौकरी सब छोड़ के न जाए, अपने ही अमेरिका से आके अपना देश में नौकरी करूँ आ परिवार के साथे रहूँ, लेकिन हम न जाए। तब की भेल कविता, उ तोहर बात मान लेलन? कविता हंस के कहलक, हाँ दीदी हमर बात के मानलन आ अमेरिका न जाके दिल्ली में ही कंपनी में नौकरी कर रहल हतन। कविता बहुत खुशी भेल कि तू अपन दृढ़ संकल्प के कारण सफलता पा लेलू। आ मेघा के की हाल है? दीदी मेघा भी हमरे साथे बीएड कैलक आ उ भी हमरा साथे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रहल हतन। ओकर शादी भेल कि न? हाँ दीदी मेघा के शादी बहुत ही सुखी संपन्न परिवार में भेल है। आकाश नाम के लड़का हतन, उ भी दिल्ली में ही कोई कंपनी में इंजीनियर हतन। बहुत अच्छा कविता, तोहरा से भेंट करे के हमरा बहुत मन करित रहे तोहर हाल समाचार जाने के लेल। तो ई अच्छा संयोग भेल है कि तोहरा से भेंट हो गेल आ तोहर सुखी जीवन सुन के मन बहुत खुश भेल। आ मेघा भी सुखी है, ये सब सुन के मन बहुत खुश है। रास्ता भर बात करैत में कविता के मंजिल आ गेल जहाँ ओकरा उतरे के रहे। दीदी अब हम इहे पर उतरब। ठीक है कविता, कभी महाविद्यालय में आके भेंट करी ह। प्रणाम दीदी कह के कविता उतर गेल। हमहू आशीर्वाद देली कि खूब खुश रह कविता, भगवान तोहरा के सफल और सुखी जीवन देथुन। हम रास्ता भर इहे सोचैत रही कि इतिहास गवाह है कि पहले भी महिला पतिव्रता और सशक्त होत रहली न, आ आज के आधुनिक परिवेश में भी महिला पतिव्रता और सशक्त हतन। कविता जैसन लड़की एकर उदाहरण है।
1: अखनी अपने सब रेणु सिन्हा के खिस्सा सुनित रही, शीर्षक रहे प्रतीक्षा। अब कार्यक्रम के अंत में आओ सुनित हती शब्द सरिता। शब्द सरिता में सबसे पहले एगो शब्द आयल है फिकिर, जेकर मायने होइया चिंता। जेना कि एगो माई के हरदम अपन बच्चा के खाए पिए के स्वस्थ रहे के फिकिर लगल रहिया, मतलब चिंता लगल रहिया, तब फिकिर के मायने भेल चिंता करना। एगो और शब्द है झनका, एकर मायने भेल बात बात पर गुस्सा करे वाला। जेना कि लोग कहत हतन बाबूजी त बात बात पर झनकेत रहत हतीन, मतलब बात बात पर गुस्सा रहत हतीन, तो झनका के मायने भेल बात बात पर गुस्सा करना। कुटेब, एकर मायने भेल खराब आदत। जेना लोग कहत हतन कुटेब स्वभाव के कारण कोनो हुनका से बात नहीं करे के चाहिए, मतलब हुनकर खराब आदत के कारण कोनो हुनका से बात नहीं करे चाहत हतन, त कुटेब के मायने भेल खराब आदत। शब्द सरिता में एगो शब्द है कोड़ी, एकर मायने भेल 20 के गिनती, यानी एक कोड़ी यानी 20 भेल। एकर उपयोग बेसी तर कपड़ा के लिए कैल जाइए। जेना लोग कहत हतीन हमरा एक कोड़ी कपड़ा धोबावे के है, मतलब हमरा 20 कपड़ा धोबावे के है, तो कोड़ी के मायने भेल 20। एनाहिते एगो औरो शब्द है अरसा, माने लंबा समय। जेना लोग कहत हतन अरसा के बाद अपने से भेंट होइया, मतलब लंबा समय के बाद अपने से भेंट होइया, तो अरसा के मायने भेल लंबा समय। अंठियाना, मतलब अनसुना करना। जेना लोग कहत हतन उ लड़का के आदत है।

कोनो काम अगर कहल जाए तो उ अंठिया देत है, मतलब अनसुना कर देत है। तो अंठियाना के मायने भेल अनसुना करना। त ई रहे शब्द सरिता के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। त अंगना कार्यक्रम अपने सबके कैसन लगैया, अपने सब अपन प्रतिक्रिया, अपन सुझाव एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकित हति। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004। ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के संगे हमरा यानी विजेता सिन्हा के अंगना कार्यक्रम से अनुमति देल जाए। तो एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करित हती।

अभी आप सुन रहे थे बज का कार्यक्रम अंगना। आलेख, संकलन और वाचन था विजेता सिन्हा का। प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बर तुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनियाइन के दिया था। बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे शोभा गोटू का गायन।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत शोभा गुटू का गायन। उपशास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
2: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओं एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
2: जी,
3: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
2: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
3: जी।
2: लेकिन क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
3: श्रोताओं आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
2: जी।
3: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
2: जी।
3: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
2: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
3: जी।
2: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
3: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
2: जी।
3: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
2: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
3: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
2: जी बिल्कुल, 18वीं शताब्दी में अंग्रेज अधिकारी भारत में सिर की मालिश करवाने लगे थे। उन्हें ये अनुभव इतना अच्छा लगा कि वे इस परंपरा को अपने देश ले गए। उन्होंने चांपो शब्द को अंग्रेजी उच्चारण के अनुसार शैम्पू में बदल दिया। श्रोताओ, शुरुआत में शैम्पू का अर्थ विदेश में केवल सिर की मालिश करना ही था,
3: लेकिन बाद में जब बाल साफ करने वाले विशेष द्रव बनने लगे

0: तो धीरे धीरे उनका नाम भी शैम्पू पड़ गया।
1: जी
0: आज ये शब्द दुनिया की लगभग हर भाषा में प्रचलित है।
1: जी
0: तो विमलेश जी, ऐसी जानकारी से सचमुच एक सुखद आश्चर्य होता है ना, और ये भी पता चलता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं।
1: जी अजीत जी, एक और शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खानपान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Book PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोताओ, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित बिरजू

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था।

0: इसी वजह से उनका नाम ब्रिजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
1: राज दरबार में नर्तक होने के कारण परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
0: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए।
2: प्रणाम पिताजी।
3: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा, तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया, लेकिन
2: लेकिन क्या पिताजी?
3: बेटा, कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और तालीम ना हो।
2: जी पिताजी, मेरे गुरु तो आप ही हैं, और मेरे चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज।
3: तो अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
2: जब आप कहें। आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
3: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
2: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
3: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
2: जी पिताजी।
0: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
1: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है। और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 900 निवासी घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो वो खील बताशा जेब में पड़ा और तालीम खाने में जाके बैठा हूँ। सब लोग रियाज कर रहे हैं, तो मैं देख के तबले पे कभी हाथ मारूँ, कभी वो हारमोनियम पकड़ लूँ। फिर अम्मा को आके मैं रसोई में बताऊँ कि अम्मा मुझे भी आता, तो उस वक्त ये उंगलियाँ भी मुझे नहीं आती थी कहाँ से ये बांध के, तो मैं गिर पड़ता था। तो अम्मा कहें, अभी गिर जाते हो, तुम बड़े हो जाओ तो ठीक से नाचना। तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर रहा कि मेरे बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूँगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूँगा।
4: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
5: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में 4-4 घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू। पर धीरे धीरे वो छीन होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा, अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊँगा पर मैं रियाज करूँगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था। अम्मा कहती थी, बेटे को साथ ले जाओ, थोड़ा देखेगा, समझेगा। तो कहे, अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है, कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे

गंडा बंधवाया और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिर्द कर लो। अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें करें, अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और